मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है तो वह संसार का होता है, और जब इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो संसार उसका होता है। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, हम ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। ईश्वर पर विश्वास करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य पहले स्वयं पर विश्वास करे।

इस संसार में वही इंसान सुखी है जो ईश्वर पर विश्वास करता है। इसलिए जागें और शुक्रिया अदा करें उस भगवान का जिसने हमें एक और सुबह दी है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित्त उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वराभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आवाज कविता कृष्णमूर्ति और जगजीत सिंह की थी। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनर भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बात में आज जिक्र करेंगे बेर के बागा में काट छांट हुए देखभाल का इस बारे में। और अपना टाइम जो है भाई लगभग ये देखें कि गर्मी का टाइम है और अपना मई का टाइम है। इसमें भाई चाहे वो बाग हमारे पास हो, चाहे कोई खड़ी फसल हो या फिर आगे कहीं कोई तैयारी हो, और इस टाइम पे ये देखे हैं कि भाई बहुत सा तापमान लगभग नू देखे हैं कि जेठ का बिना में गर्मी पड़ा है। और फिलहाल की बात करी जाए तो भाई कई जगह थोड़ी बहुत तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी बताई गई है। तो अपने जो काम धाम भाई किसान भैया करने हैं उनका थोड़ा ध्यान रख के मौसम का उस हिसाब से हमने करें। बेर की चढ़ती बात आओ तो ये देखे हैं कि भाई एक साल पुरानी जो पुराना पेड़ हो गया है, पुरानी झाड़ी हो गया है, उसकी टहनियाँ ने लगभग 6 सेकेंडरी तक काट लिया हम। और जो बेर के पौधे हैं इस महीने में भाई कटाई छटाई हमने पूरी कर लेनी है उनकी। और सारा जो काम है वो पौधे में भाई लगभग 100 किलोग्राम प्रति पौधा हमने गोबर की जो खाद है वह इसमें देनी है और गहरी जुताई इसमें कर दें। और भाई सदाबहार जो फलदार पौधे हैं उन्हें गर्मी से बचाने का प्रबंध हमने करना है, क्योंकि जो पौधे के मुख्य तनिया पर ब्लाइटक्स या फिर बोर्डा पर मिश्रण का लेप हमने लगाना चाहिए ताकि इसमें कोई सुराख वगैरह ना आवे, कोई कीड़ा वगैरह इसमें ना लगे, आगे दिक्कत ना आ पावे। और छोटे पौधे ने गर्मी से बचाने खातर भाई पौधे में 2-1 इंच की दूरी पर ढेचे की जो है बिजाई हमने चारों तरफ कर देनी है। और ये देखे हैं कि छोटा बाग है उससे भाई थोड़ी ही अलग थे आमदनी भी किसान भाई ले इसका है, क्योंकि छोटा बाग में भाई अपना लगभग ये देखे हैं कि 3-4 साल तो ही, क्योंकि झाड़ी का देखा जा है बाग हमने नू पेरा पट्टा है कि बाग हमारे पास कौन सा है। एक तो छोटे पौधा का बाग हो हमारे पास भाई कोई किन्नू माल्टा नींबू, उसके बीच बीच में हम थोड़ा हा चाहे बेर हो आम खेती जो है अलग तक कर सके हैं, चाहे वो हमने कोई सब्जी की फसल लगानी हो है या फिर कोई हमने आमदनी के लिए भाई कोई हम उसके में अंदर गेहूँ और ऐसा देखे हैं कि जिससे भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फ़ायदा लिया जा सके। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह रो है कि भाई गर्मी का टाइम में खास तौर पर जब हम बाग लगावा हाँ तो ध्यान करने की बहुत सी बात इसमें आ जाए हैं। जब बाग लगाऊ हैं तो ये देखे हैं कि हमारी दिशा है वह ठीक होनी चाहिए हमारे पास, क्योंकि कृषि वैज्ञानिक सलाह जो अपनी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है बागवानी विभाग है उस तो हमने सलाह ले कि ऐसे जो काम है हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है, फिर हम चेक करवाओ फिर हम बाग जो है लगा सके हैं। और अगर हमने बाग लगाना है तो हर एक फसल में देखें कि भाई ड्रिप इरीगेशन टपका सिंचाई जिस नाम कह दी है वो सबसे बढ़िया वो है, क्योंकि इसमें अवांछित जो खरपतवार हैं वह भी नहीं आते, सारा इकट्ठा पानी गाढ़ा पानी नहीं देना पड़ता, और जो अपना धरती का चौवे का पानी जिस नाम कहते हैं वाटर लेवल कहते हैं भाई वो भी अपना बढ़िया बनया रहा है। तो टपका सिंचाई विधि जो है हमने ड्रिप इरीगेशन वो है हर एक बाग में अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं आए और पर्याप्त जो पानी है पेड़ ने हमेशा ठीक टाइम पर मिलता रहो, टपका टपका तक मिलता रहो ताकि उसका जो है जड़ अच्छी तरीके से चल सके हैं और पानी की कमी भी महसूस ना हो। तो ये देखे हैं कि चाहे हमने कौन सा भी पेड़ लगा रखा है, चाहे वो झाड़ी का है, बेर का है, आड़ू का है, आड़ूचे का है, सारे की देखभाल हमने काट छांट करनी बहुत ज़रूरी है, पानी लगाऊँ खोदी निकालें जब जाके भरपूर पैदावार चाहे हमने बाग हो चाहे कोई अन्य फसल हो जब जाए किसान भाई ले इसके है। तो आज भाइयों कृषि की बातों में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव इडप्पार्नी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Central Bureau of Investigation, CBI, has taken into its custody Shubham Khairnar in connection with the alleged NEET paper leak. Shubham was detained from Nashik in Maharashtra yesterday by the Crime Branch Unit of Nashik Police on request of Rajasthan Police. The NEET UG 2026 exam for admission to undergraduate courses in medical colleges held on 3rd of this month was cancelled yesterday amid allegations of paper leak. The government asked the CBI to carry out a comprehensive inquiry into the irregularities. In a related development, a parent of a NEET UG 2026 candidate has filed a complaint with the Latur SP office, alleging that a private coaching institute conducted a mock test before the exam, in which 42 questions reportedly matched those asked in the actual NEET paper. SP Amol Tambe directed the subdivisional police officer to conduct an immediate inquiry and initiate legal action against those found guilty. Earlier, Rajasthan Police Special Operations Group detained 15 people during investigations into the suspected network and money trail. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind, Manish, from Jaipur. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of Amma Makkal Munnerettra Kadagam, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Idappadi Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. A high-level Indian parliamentary delegation led by Lok Sabha Speaker Om Birla will visit Bhutan from today with the main objective of further strengthening India-Bhutan relations. The 51-member delegation includes MPs from Rajya Sabha and Lok Sabha and officials from the Ministry of External Affairs. The delegation is expected to hold discussions on various aspects of Bhutan-India relations and ways to enhance cooperation between the two neighbouring countries. The delegates will also meet the King of Bhutan and the Prime Minister of Bhutan during the visit. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those which were final reports have already been submitted. The fragile ceasefire between the United States and Iran appears increasingly unstable after President Donald Trump rejected Tehran's latest peace proposal, describing the agreement as being on massive life support and dismissing Iran's counteroffer as garbage. The sharp exchange has deepened uncertainty over efforts to prevent a wider conflict in West Asia. On the other hand, Iran's parliament speaker, Mohammad Baghir Qalibaf, warned that the country's armed forces were prepared to deliver a lesson-giving response to any aggression, while Tehran defended its proposal as reasonable and generous. U.S. President Donald Trump is scheduled to arrive in Beijing today for a high-stake three-day visit to China. The much-anticipated meeting between Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is expected to feature discussions on several aspects of bilateral ties, with Mr. Trump indicating that trade would be a key topic on the agenda. The India Meteorological Department has issued red alert for heat wave conditions in Rajasthan. Border districts of state are currently reeling under severe heat wave conditions. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। और अब समय हो चला है कार्यक्रम रूपरेखा का।

युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर करियर काउंसलिंग के अंतर्गत टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार इस विषय पर जानकारी देंगे अजय कौशिक।

एनसीईआरटी द्वारा तैयार प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाया जाएगा दिन में 12:30 पर, और एक अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे दिन में 2:45 पर।

हमारी सेहत कार्यक्रम में प्रातः 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे हड्डियों के प्रमुख रोग कारण व उपचार। इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप कंबोज से की गई भेंटवार्ता।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर भेंटवार्ता एक किसान से। इस कार्यक्रम में आज के किसान होंगे जयकरण। ग्रामीण संसार में फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली होगा शाम 7:00।

खेत खलियान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर भिंडी फसल की देखभाल इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। सुगम संगीत कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे रात 8:25 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रातः 9 बजे और दिन में 1:10 पर श्रोता सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। फिल्म संगीत शाम 7:30 पर, एक फिल्म से कार्यक्रम 9:15 पर और मनचाहे गीत सुनना न भूलें 10:00।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर कलाकार होंगे कपूर चंद। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारी सेहत कार्यक्रम में हड्डियों के प्रमुख रोग कारण व उपचार, इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप कम्बोज से की गई भेंटवार्ता। इनसे भेंट करेंगे विनय कुमार।
1: श्रोतावाद बात करेंगे हड्डी रोग कारण बचाव समाधान इस बारे में, और विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप कम्बोज जी। आप सीनियर प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स यानी कि हड्डी रोग विभाग PGIM रोहतक से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका।
2: थैंक यू
1: जी। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे प्रदीप जी कि जब हम हड्डी रोग की बात करते हैं तो चारों तरफ हम बात कर रहे हैं कि हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं इस दौर में सबके साथ में जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि आजकल जब आप OPD कर रहे हैं तो आपके पास किस प्रकार के पेशेंट आते हैं जो हड्डियों की कोई ना कोई समस्या लेके आपके पास में आ रहे हैं।
2: विनय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए
1: जी।
2: और जहाँ तक मरीजों का सवाल है, OPD में हमारे पास तकरीबन रोज़ 700 से 800 मरीज आते हैं हमारी OPD में, और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं हमारे जो है 50 एंड अबव एज के पेशेंट होते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें पेशेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स के आधार पे, तो हाँ। दो तरह के पेशेंट हमें मिल सकते हैं,
1: जिसे कौन-कौन से?
2: एक तो वो जो चोट खाते हैं, जो एक्सीडेंट से आते हैं, या दूसरे वो जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं जिनके जोड़ों की समस्याएं होती हैं। तो जो पेशेंट्स यंग हैं वो ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास चोट खाकर एक्सीडेंट से आते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे समाज के लिए
1: जी।
2: क्योंकि यंग जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं उन उस एज में लोग चोट खाकर और अपना समय जो है वो बिस्तर पे बिताते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है।
1: बहुत बड़ी समस्या है, और वो चोट लग जाती है, अगर वो गंभीर समस्या होती है बहुत जल्दी रिकवर भी नहीं हो पाती है।
2: चोट लगने को एक मिनट लगता है विनय जी, हाँ। परंतु उसे रिकवर करने में सालों लग जाते हैं।
1: हाँ।
2: दूसरे तरीके जो मरीज हैं हमारे पास वो हैं बुजुर्ग हमारे,
1: हाँ।
2: जिनको जोड़ों की समस्याएं होती हैं
1: जी।
2: ये जोड़ों की समस्याएं जो हैं ये दो प्रमुखता दो वजह से होती हैं। एक तो जो एज रिलेटेड होती हैं, हाँ। उम्र के साथ जो हमारे जोड़ घिस जाते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है,
1: यानी कि जब उम्र बढ़ रही है और उसके साथ में जोड़ अगर घिस रहे हैं तो वो तब समस्या आ रही है
2: जी। उसको हम जैसे अगर अपनी टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं
1: जी।
2: और दूसरी समस्या वो जो हो सकता है उनको आए जोड़ों की, तो वो आ सकती है किसी को जैसे जवानी में चोट लगी, उस समय तो वो रिकवर कर गए, ठीक कर गए, परंतु थोड़ी बहुत ही अलाइनमेंट खराब हो गई, तो उसकी वजह से इंसान चलता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, परंतु जो जोड़ की घिसने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है
1: जी। वो हम इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि कई बार हमारे साथ ये समस्या आती है कि जवानी में कई बार पैर में चोट लग गई थी, हाथ में चोट लग गई थी, तो उस समय हम ठीक हो गए थे, लेकिन बाद में कई बार ऐसा होता है कि 10 साल बाद 20 साल बाद वो कहेंगे कि ये अचानक से अब दुखने लगी है उसी जगह से।
2: नहीं, वो दुखने तो लग जा बाद में लगती है, परंतु वो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली जोड़ का घिसने का एक प्रोसेस है, एक स्पीड है
1: जी,
2: वो जिस आदमी को चोट लगती है उसमें वो स्पीड बढ़ जाती है
1: जी
2: घिसने की। तो जो जोड़ 60 साल या 70 साल की उम्र में जाके घिसते हैं वो 50 साल की उम्र में घिस जाते हैं
1: जी।
2: तो ये एक इशू होता है, एक जैसे चोट लगना, इसे हम चोट लग के जो जोड़ घिसते हैं उसे हम सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं
1: जी। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, कई बार ये भी शिकायत आती है अक्सर, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बताते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ भी होती है, कि सर्दियों में खासकर हड्डियों में या जोड़ों में ज़्यादा दर्द रहता है।
2: वो जैसे हमारे एनवायरनमेंट का कुछ ना कुछ हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। गर्म एनवायरनमेंट जो है आपको हीटेड अप रखता है, वो जोड़ को मुलायम यानी नरम बना के रखता है
1: जी।
2: उसी तरह जैसे सर्दियों में ठंड में हमारी मांसपेशियां थोड़ी सी अकड़ जाती हैं, अकड़ाहट रहती है, तो वो हाँ। जोड़ में दर्द महसूस होता है उसकी वजह हाँ। से जो घिसे हुए जोड़ होते हैं उनमें ज़्यादा दर्द महसूस होता है
1: जी।
2: बिकॉज के मसल्स जो हैं वो थोड़ा टाइट रहते हैं, वो बॉडी को वार्म करने की कोशिश करते हैं, ठंड की वजह से, और उसके एवज में वो जोड़ों को टाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें घिसे हुए जोड़ में दर्द महसूस होता है
1: जी।
2: तो इसलिए सर्दियों में हमारे बुजुर्गों को थोड़ा सा जोड़ अकड़े हुए या दर्द महसूस ज़्यादा होता है
1: जी। बिल्कुल। तो साथ के साथ में जब हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या आती है, उसमें आप बता रहे हैं कि भाई उम्र के साथ में जोड़ घिसने की एक प्रक्रिया होती है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया, इसके अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से जोड़ घिसते रहते हैं?
2: बहुत बढ़िया अविनय जी सवाल है, क्योंकि एक तो एज रिलेटेड चेंजेस हैं जो हर इंसान में होने ही हैं।
1: हाँ।
2: वो ये हमारे भगवान ने जो हमारे जोड़ बनाए हैं वो सबके अलग अलग बनाए हैं, किसी के 70 साल चलते हैं, किसी के 80 चलते हैं, किसी के 100 भी निकाल देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
1: हाँ।
2: तो वो जो एक तो प्रक्रिया है जो एज के साथ जोड़ घिसते हैं, दूसरा है कि जैसे हमें जवानी में या बचपन में कोई छोटी मोटी चोट लग गई जिससे रिकवर तो हम कर गए परंतु अलाइनमेंट खराब हो गई थोड़ी बहुत ही, तो उसमें एक हमारे जोड़ थोड़ी जल्दी घिस जाते
1: जी।
2: हैं। फिर कुछ इन्फेक्शन्स हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन्स हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन्स हैं जो हमारे शरीर में कभी जोड़ को पकड़ लिया, मान लो बचपन में कभी हमारा थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ जोड़ में जिसे हम आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस या वायरल आर्थराइटिस बोलते हैं, वो एक एपिसोड हुआ, उसके बाद हम उससे रिकवर कर गए परंतु वो जोड़ हमारा जो घिस गया उस समय वो घिस गया
1: जी,
2: वो आगे घिसता ही चला जाता, बड़ी जल्दी उसकी घिसावट होती है जोड़ की।
1: ऐसे हम समझ सकते हैं डॉक्टर साहब कि जैसे चिकनगुनिया बुखार है
2: जी,
1: उसमें भी जोड़ में दर्द होता है फिर बाद में कई।
2: बिल्कुल, उस चिकनगुनिया बुखार में हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं अगेंस्ट हमारे जो जोड़ की झिल्ली होती है जिसे सिनोवियल मेम्ब्रेन हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट झिल्ली बन जाती है और वो जोड़ को ख़राब कर देते हैं
1: जी।
2: तो इसका बुखार के बाद कई दिन तक जोड़ों में सोजिश रहती है, दर्द रहता है, जो कि मेडिकेशन से कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, हो भी जाता है, परंतु कई बार लंबा चलता है
1: जी,
2: और कई बार वो जोड़ को इस हद तक ख़राब कर देता है कि हमें उसको बदलने की नौबत आ सकती है
1: जी। बिल्कुल। तो क्या लाइफस्टाइल से जुड़ी भी समस्याएं ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से जब हम जोड़ों की बात कर रहे हैं उनकी समस्याएं बढ़ती है?
2: बिल्कुल, लाइफस्टाइल से जैसे हम हमारा जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर हम हमारी लाइफस्टाइल में चौकड़ी मार के बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं, इन जो प्रक्रियाओं से हमारे घुटने थोड़े जल्दी घिसते हैं। अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें वेस्टर्न वर्ल्ड से तो वो घुटने, उनके घुटने हमारे कंपैरेटिवली कम घिसते हैं
1: जी,
2: क्योंकि वो ना चौकड़ी मारते हैं ना उकड़ू बैठते हैं, उनकी हैबिट में नहीं है, हमारी रूटीन की हैबिट्स में है उकड़ू बैठना, चौकड़ी लगाना। हम किसी भी प्रक्रिया में अगर अपने घर में कुछ भगवान का नाम ले रहे हैं तो चौकड़ी मार के बैठेंगे
1: जी,
2: बाहर कुछ काम कर रहे हैं, घर की लेडीज़ हैं अगर पोचा भी लगा रही हैं तो उकड़ू बैठ के लगाती हैं।
1: हाँ।
2: तो ये जो प्रक्रिया है, आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो इससे जो इन हमारी जो इंडियंस या सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं इनके घुटने ज़्यादा जल्दी घिसते हैं बिकॉज ऑफ दीज लाइफस्टाइल्स
1: जी।
2: दूसरा ये कि जो हमारे आजकल ज़्यादातर हम इंडोर रहते हैं, आउटडोर हमारी एक्टिविटीज़ कम होती हैं, सन एक्सपोजर कम होता है, और सन एक्सपोजर भी ये लगाइए कि बिकॉज हमारी फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करके रखते हैं कपड़ों में, तो उनके शरीर पे तो धूप लगती ही नहीं है
1: जी,
2: तो उनमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी रहती है।
1: हाँ।
2: तो उससे क्या है कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो बीमारियाँ हैं जो एक्टिविटीज़ और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं।
1: इसमें क्या होता है?
2: इसमें हड्डियाँ जो हैं, जैसे हम दोनों बीमारी को लेकर चलते हैं, एक ऑस्टियोपोरोसिस और एक ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो बच्चों में होए तो रिकेट्स बोलते हैं और बुजुर्गों में या ओल्ड पीपल में होए तो ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं
1: जी।
2: तो उसमें जो विटामिन डी, हमारी जो हड्डी बनती है उसके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन नहीं होता
1: जी,
2: तो जो क्वालिटेटिव बोन है वो कम हो जाती है
1: जी,
2: और क्या कहते हैं, ज़्यादा बोइंग हो जाती है बच्चों में हड्डियों की, बुजुर्ग ओल्ड पीपल में वो फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाते हैं
1: जी।
2: दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटीज़ जब कम हो जाती हैं तो हमारी हड्डी के अंदर से जो मिनरल्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं और उससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं।
1: अच्छा।
2: इस हद तक कमज़ोर हो जाती हैं कि हड्डी पहले टूटी फिर आदमी गिरा, या गिरने से हड्डी टूटी, हम दोनों में पता ही नहीं लगा
1: पता ही नहीं कर पाएंगे
2: जी। जैसे वो कहते हैं ना कि मुर्गी पहले आई अंडा,
1: अंडा पहले आया
2: जी, जी। तो हड्डी टूट के मरीज गिरा या मरीज के गिरने से हड्डी टूटी, कई बार ये पता ही नहीं चलता क्योंकि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी होती हैं। आप कपड़े पहनते हुए पैरों को उठाते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, हड्डी उसी में टूट जाती है
1: जी।
2: इसलिए बुज़ुर्गों को कई बार सलाह देते हैं कि जो डिवाइडेड कपड़े हैं जैसे पजामा है या पैंट है तो वो चेयर पे बैठ कर फिर पहने। इसे हमारे जो पुराने लोग थे, बुज़ुर्ग थे या पुरानी सभ्यता थी, तो डिवाइडेड कपड़े नहीं पहनते थे, हमारे यहाँ धोती का रिवाज था, तो वो उसको पहनने के लिए पैर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी
1: जी।
2: वो सिर्फ अपने आप बांधना और उसी से काम चला लेते थे। अब ये जब पैर उठा के जो बुज़ुर्ग पजामा या पैंट पहनने की कोशिश करते हैं तो उसमें ट्विस्ट हो जाता है और उससे हड्डी टूट जाती है, इतनी बोन वीक हो जाती है हमारी
1: जी।
2: और ये सारा उसका जो हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी होती है एक्टिविटी रिलेटेड, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, हम अपने शरीर पे पूरा ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते, ये सब उसकी वजह से होता है। थोड़ा डाइटरी इसका कंपोनेंट भी है, हम खाने में खान पान क्या ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बेटर करता है।
1: अभी इसी पे आ रहे हैं डॉक्टर साहब, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये हो रहा है कि आजकल के समय में हम देख रहे हैं कि मोटापे की समस्या आ रही है
2: जी, बिल्कुल
1: शरीर का ज़्यादा वजन हो रहा है, उसमें डाइटरी फैक्टर भी शामिल हैं
2: बिल्कुल।
1: तो इसमें क्या मिथ है या सच्चाई है ये बताइए, जब शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ता है तो उस समय जो जोड़ों से संबंधित समस्याएं हैं वो कहीं पहले आनी शुरू हो जाती है।
2: नहीं बिल्कुल, अभी आप जितना ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट होगा उतना ही जोड़ के ऊपर लोडिंग बढ़ेगी। आम तौर पे अगर हम चलते हैं तो हमारे जोड़ों में जो प्रेशर पड़ता है वो हमारे वेट का ऑलमोस्ट 4 to 5 times प्रेशर पड़ता है। अगर हम 60 किलो के हैं तो आप लगाइए कि हमारा जोड़ जब वजन ले रहा है तो उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो 240 से 300 किलो का प्रेशर बनता है
1: जी।
2: जब हम भागते हैं तो उसी जोड़ में वो प्रेशर 700 से 800 किलो तक का बन जाता है
1: जी।
2: तो अगर हमारा वेट जो है 60 से आप लगा लीजिए 80 किलो हो गया तो आप वो प्रेशर उसी मात्रा में बढ़ता नजर आएगा
1: जी।
2: और वो जोड़ को उतना ही सहना पड़ेगा
1: जी।
2: तो वजन बढ़ने से जोड़ों का प्रेशर जरूर बढ़ता है जी, जोड़ों पे असर बहुत जल्दी आता है।
1: अब हमने ये पहचान लिया कि हमारे जोड़ में दिक्कत है
2: जी।
1: ये जोड़ आप बता रहे हो पैर के भी हो सकते हैं और कई बार हाथ के भी हो सकते हैं, हाथ क्या हाथ में भी इसी तरह की बातें होती हैं या इसमें भी और कुछ अलग तरह की समस्याएं होती हैं?
2: नहीं देखिए, आमतौर पर हमारे शरीर में दो तरह के जोड़ हैं जिन्हें हम छोटे जोड़ बोलते हैं और बड़े जोड़ बोलते हैं।
1: ठीक है,
2: छोटे जोड़ों में जैसे हाथ के जोड़ आ गए, उंगलियां आ गई, पैरों के जोड़ आ गए, इनको हम छोटे जोड़ बोलते हैं। कूल्हा हो गया, घुटना हो गया, शोल्डर हो गया यानी कंधा हो गया, कोनी हो गई, एंकल हो गए, ये बड़े जोड़ों में आते हैं
1: जी।
2: तो जब छोटे जोड़ों में जो दर्द महसूस होता है तो हम पूछते हैं मरीज से कि उनको सुबह उठने के बाद कैसी उनकी तबीयत होती है, अकड़ाहट होती है कि जोड़ों में दर्द होता है। तो छोटे जोड़ों में जब दर्द होता है सुबह उठने पे तो वो गठिया की तरफ संदेह करता है, उसे रूमेटॉयड आर्थराइटिस बोलते हैं और अगर दिनचर्या बढ़ने पे जोड़ों में दर्द होए तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जाता है
1: जी।
2: तो ये बेसिकली छोटे जोड़ और बड़े जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है। बड़े जोड़ों में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन होता है, जो वो रूमेटॉयड से भी ख़राब हो सकते हैं, ऐसी नहीं है कि रूमेटॉयड से नहीं ख़राब होंगे, बड़े जोड़ रूमेटॉयड से भी ख़राब हो सकते हैं।
1: तो अब हमें पता चल गया कि हमारे जोड़ में दर्द हो रहा है
2: जी,
1: तो कितने दिन के बाद तक हम डॉक्टर के पास चले जाने?
2: विनय जी, जब दर्द है तो जाना चाहिए डॉक्टर के पास, इमीडिएटली जाना चाहिए, वेट क्यों करनी चाहिए?
1: क्योंकि इसमें सवाल इसलिए है ये क्योंकि जोड़ में दर्द हो रहा है, लगातार लोग इग्नोर करते रहते हैं उसको।
2: हाँ, हमारे यहाँ है ये प्रवृत्ति लोगों की कि घर की जो मेडिसिन्स हैं, जो होममेड मेडिसिन्स हैं, पहले उनका हम सेवन करते हैं, उनसे आराम मिल जाए तो हम सोचते हैं कि चलो डॉक्टर से जाने से बचे, चक्करों से बचे। परंतु कुछ हद तक वो सही भी है, गलत नहीं है, हमारी जो औषधियाँ हैं या जो बड़े बुजुर्गों ने बताया है, क्योंकि जैसे कोई भी चोट लगे या जोड़ में दर्द हो तो हम कहते हैं हल्दी ले लो 1 चम्मच सुबह शाम। हल्दी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, उससे जोड़ों में राहत मिलती है। परंतु अगर जोड़ों का दर्द आपको रोज हो रहा है और आपको कुछ ना कुछ उसके लिए दवा लेनी पड़ रही है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जाके मिलें, पीजीआई में मिलें।
1: जी, दो बातें पूछना चाहेंगे इसमें
2: जी।
1: क्या जब जोड़ का दर्द हो रहा है वहाँ पे सूजन होती है? क्योंकि कई बार हम घुटने में देखते हैं, टखने में देखते हैं, दर्द भी हो रहा है और साथ के साथ उसमें बाहर काफ़ी वो सूज के मोटा हो जाता है
2: जी।
1: दूसरा, साथ के साथ में सूजन कई बार हो भी जाती है और कई बार नहीं भी हो रही है तो वहाँ से टक टक की आवाज़ निकलती है, चलते हुए, बैठते हुए, उठते हुए।
2: जी
1: जी,
2: ये दोनों चीज़ें जो हैं, सूजन है या चढ़ चढ़ की जो आवाज़ आती है बैठने उठने में, ये दोनों साइंस होते हैं। चढ़ चढ़ की आवाज़ को हम अपनी टेक्निकल भाषा में क्रेपिटस बोलते हैं। सूजन जो है वो स्वेलिंग है, इफ्यूजन की वजह से, जैसे जोड़ में पानी बन जाता है उसकी वजह से। ये दोनों ही चीज़ें हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ संदेह करती हैं
1: जी।
2: और अगर आपको गठिया है तो गठिया में भी ये दोनों चीज़ें पाई जा सकती हैं
1: जी।
2: सूजन या इफ्यूजन जो हम जॉइंट का बोलते हैं, वो घिसने से भी हो सकता है, आर्थराइटिस से भी हो सकता है और वो कई बार चोट लगने से भी हो सकता है। खून का रिसाव होए, घुटने में चोट लगी, खून का रिसाव हो गया, उससे भी सूजन आ जाती है। परंतु अगर हमें चोट लगी है तो हमें पता ही होगा कि चोट लगी है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे।
1: जी बिल्कुल
2: जी।
1: और हमें पता चल गया है अब इसका कि भाई सूजन हो रही है, टक टक की, ये चढ़ चढ़ की आवाज़ आ रही है, बल्कि आजकल चढ़ चढ़ की आवाज़ हड्डियों से तो जो जवान लोग होते हैं उनमें से भी आ रही है, बच्चों में से भी आ रही है आजकल की संस्कृति के हिसाब से। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारे साथ में ये समस्याएँ आ रही हैं
2: जी,
1: और इसके कारण भी ये हो रहे हैं हमारे साथ में
2: जी।
1: तो अब इसका तरीका बताइए कि भाई जब इलाज हम करते हैं
2: जी,
1: उसमें क्या क्या बातें होती हैं शुरुआत?
2: हाँ देखिए विनय जी, हर मैं पहले आपको एक वो टक टक की आवाज़ के बारे में बताऊँ।
1: हाँ,
2: थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा।
1: हाँ,
2: कि जवान आदमियों में या बच्चों में टक टक की आवाज़ नॉर्मली भी आ सकती है
1: जी।
2: ये हमारे जॉइंट में जो गैसेस होती हैं ब्लड में,
1: हाँ,
2: वो कई बार रिलीज हो जाती हैं और वो जब डिस्प्लेस होती हैं तो हमारे जोड़ में टक टक की आवाज़ आ सकती है
1: जी।
2: और सडन स्लिपेज ऑफ टेंडन होता है।
1: हाँ,
2: जैसे कि हम कई बार ये चटाके निकालते हैं उंगलियों के।
1: हाँ,
2: वो कटक कटक बोलते हैं।
1: हाँ,
2: आवाज़ तो वो भी आती है, वो
1: हाँ,
2: भी नॉर्मल है, नेचुरल है
1: जी।
2: तो इन दोनों से कंफ्यूज ना हो कि

0: की बीमारियां हैं, उसमें हमें एक्सरे से या और एडवांस इन्वेस्टिगेशन से, एमआरआई से, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये जोड़ घिस क्यों रहा है।
1: जी
0: अगर वो उसका हमें कारण पता चलता है, कई बार अलाइनमेंट ख़राब होने से जोड़ घिस रहा होता है, तो हम उसका सर्जिकल प्रोसीजर करके अलाइनमेंट ठीक करते हैं।
1: अच्छा
0: उस स्थिति में हम जोड़ नहीं बदलते।
1: हाँ
0: तो हमें जब ये पता है कि अलाइनमेंट ख़राब होने से जोड़ घिस रहा है, तो उसकी अलाइनमेंट ठीक कर देंगे एक सर्जिकल प्रोसीजर से, जिसे ऑस्टियोटमी कहते हैं हम, हड्डी को काट के सीधा करना।
1: जी
0: तो फिर उससे हम जोड़ को बचा सकते हैं दस
1: हाँ
0: 8-10 साल और।
1: हाँ
0: लेकिन अगर हमारा जोड़ ग्रेड 4 स्थिति में पहुंच गया है, तो ग्रेड 4 में हमें जोड़ों को बदलना पड़ता है।
1: अच्छा,
0: जी
1: जैसे हम ये घुटने टकने हैं इनको बदलते हैं,
0: जी
1: ये प्रोसेस होता है उसमें।
0: जी ग्रेड
1: जी
0: फोर ऑस्टियोआर्थराइटिस में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम जोड़ों को रिप्लेस कर देते हैं, स्टील के नए जोड़ डाल देते हैं।
1: तो जब ये स्टील के नए जोड़ डालते हैं डॉक्टर साहब,
0: जी
1: इसमें कई बार मिथ है हमारे यहाँ पे कि भाई वो ज़्यादा काम नहीं देते, उसके बारे में बताइए कि ये डालने के बाद मरीज़ की अवस्था कैसी होती है, क्या वो वापस दोबारा से सारे काम कर सकता है?
0: देखिए विनय जी, आज की डेट में जो जोड़ हमारे पास अवेलेबल हैं, वो इतने आधुनिक और इतने डेवलप्ड हैं कि अगर सही ऑपरेशन हुआ और सही तरीके से उनको डाल दिया जाए, तो वो 25-30 साल कहीं नहीं जाते। हमारा जो एडवांस्ड जो पॉलीथिलीन है, जिसे हम दो जोड़ों के बीच में, जैसे दो स्टील के दो कंपोनेंट होते हैं, एक दोनों हड्डियों के ऊपर हम स्टील के कंपोनेंट लगाते हैं और बीच में इंसर्ट डालते हैं पॉलीथिलीन का,
1: जी
0: तो आजकल हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो आ रहा है वो इतना स्ट्रांग है कि 25-30 साल नहीं घिसता।
1: अच्छा
0: जी तो
1: बिल्कुल
0: ये मिथ है कि जोड़ नहीं चलते। जोड़ अगर सही अलाइनमेंट से डाले गए हैं, तो 25-30 साल कहीं नहीं जाते।
1: जी बिल्कुल।
0: जी
1: और चलते चलते हमें बताइए कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज, जैसे आपने शुरू में बताया था बैठने की आदत है हमारी, तो
0: जी
1: कुछ ऐसी प्रैक्टिसेज जिससे हमारे आम जनजीवन में अपनाएं कि भाई जो हड्डियों से जुड़ी हुई और समस्याएं हैं, चाहे वो जोड़ों के दर्द हो या फिर और किसी भी प्रकार का हड्डियों की कोई भी समस्या है, उससे हम
0: विनय जी, हम एक अगर हम एक आम आदमी की तरह सोचें, तो हम कुछ भी घर में सामान रखते हैं तो उसकी देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं।
1: हाँ
0: एक गाड़ी लेते हैं तो उसको रोज कपड़ा मारेंगे, हफ्ते में उसको धोएंगे, साफ सफाई रखेंगे। परंतु जो भगवान ने हमें अपना शरीर दिया है, जो अमूल्य है, उसका ध्यान रखने में हम चूक करते हैं। हम अपने समय अपने लिए, अपने शरीर के लिए दिन में 20-25 मिनट नहीं निकाल पाते। हमें काम की इतनी जल्दी है, हमें और चीज़ों की इतनी जल्दी है, कहीं जाने की जल्दी है, तो हम 20-25 मिनट भी अपने शरीर के लिए, एक्सरसाइज के लिए नहीं निकाल पाते।
1: जी
0: तो सबसे बड़ा जो हिदायत रहेगी वो ये रहेगी कि अपने शरीर के लिए कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम जरूर निकालें।
1: जी
0: आप कोई एक्सरसाइज ना करें तो आप वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, सबसे अच्छा आपके सेहत के लिए रहेगा।
1: जी बिल्कुल
0: कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकें ओल्ड एज में,
1: हाँ
0: जैसे नीचे ना बैठें, चेयर पे बैठें,
1: हाँ
0: उकड़ू तो ना बैठें,
1: हाँ
0: इंग्लिश टाइप की टॉयलेट सीट यूज़ करें, वो बेटर है
1: हाँ
0: हमारे बुजुर्गों के लिए।
1: बिल्कुल
0: सीढ़ियों का जितना भी अगर हम यूज़ करते हैं, तो वो मिनिमम करें पौड़ियों सीढ़ियाँ चढ़ने का। और अगर
1: हाँ
0: सीढ़ियाँ बनवा भी रहे हैं घर में, तो उनकी हाइट 5 से 6 इंच से ज़्यादा सीढ़ी की हाइट नहीं होनी चाहिए।
1: ठीक है
0: ये एक बहुत ज़रूरी घरों में हमारे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितनी ऊंची सीढ़ी होगी उतने ही हमारे बुजुर्गों के लिए ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी।
1: बिल्कुल सही बात। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात कि जब आप कह रही हो कि घुटने ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, दूसरे लग जाते हैं
0: जी
1: और जोड़ चेंज किए जाते हैं उसमें, तो कई बार लोग बोलते हैं कि उसमें खर्चा आ जाता है, और
0: जी
1: ओल्ड एज में कई बार क्योंकि सुरक्षा का अभाव होता है, सोशल सिक्योरिटी का अभाव होता है, और कई बार बुज़ुर्गों के पास पैसे नहीं होते हैं जो इससे ग्रस्त हैं,
0: जी
1: तो इसके बारे में कोई मार्गदर्शन है?
0: जी देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा विनय जी, क्योंकि अभी जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ने चला रखी है, उसके तहत आप कोई सा भी घुटना अपना बदलवा सकते हैं। पीजीआई में,
1: जी
0: गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप

0: कोई भी घुटना, कोई भी कूला, कोई भी क्या कहते हैं कोनी, सब बदले जा सकते हैं आयुष्मान भारत में स्कीम में, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं किसी का भी लगेगा
1: अच्छा
0: जी। और जहाँ तक उन लोगों के लिए है जो जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है,
1: हाँ
0: तो जब से ये सरकार, नई सरकार आई है, इन्होंने घुटनों के रेट फिक्स कर दिए हैं।
1: जी
0: पहले जो घुटना हमें 1.5 लाख में मिलता था, अब वो 74,000 रुपये में मिलता है। तो उसके लिए तो जो ये स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई है आयुष्मान भारत स्कीम, बहुत अच्छी स्कीम चलाई है लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें सभी आते हैं, गरीब तो चलो जिसका कार्ड है ही है, बाकी जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 75 एंड अबव है, उनका तो सबका कार्ड बिना की इनकम सोर्स देखे ही बन जाता है
1: बिल्कुल ठीक
0: जी।
1: है। और कुछ जोड़ना चाहेंगे आप अपनी तरफ से जो रह गया वो?
0: गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या स्कीम्स हैं, उनके लिए पीजीआई में सभी तरह की सहूलियतें उपलब्ध हैं। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आप जोड़ बदलवाने ही वहाँ हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी तरह का अपना इलाज कराना चाहते हैं, सभी तरीके का इलाज पीजीआई में उपलब्ध है। अगर किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर आइए, वहाँ आपका पूरी तरीके से ठीक ठाक इलाज किया जाएगा।
1: जी तो प्रोफेसर प्रदीप कंबोज जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने हड्डियों के रोग इसके विषय में इतनी विस्तार से बातचीत की, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: हमारी सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हड्डियों के प्रमुख रोग कारण व उपचार, इस विषय पर डॉक्टर प्रदीप कंबोज से की गई बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे थे विनय कुमार। ये कार्यक्रम सुनवाया गया आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से और अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

0: सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि समसामयिक विषयों पर जानकारी दी जाती है हमारे इस कार्यक्रम में, तो आज सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं आर के नारायण की पुण्यतिथि के बारे में। आज ही के दिन 13 मई को हम मनाते हैं आर के नारायण की पुण्यतिथि। इनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को तमिलनाडु में हुआ था। वे भारत के अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित लेखकों में से एक है। उन्होंने मालगुडी डेज नामक उपन्यास लिखा, जिसमें स्वामी और उसके दोस्तों की कई कहानियां हैं, जो कि मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में घटित होती हैं। ये कहानियां बाद में एक लोकप्रिय टीवी सीरियल भी बनी हैं। नारायण अपनी सरल, सक्षम और हास्यपूर्ण लेखक शैली के लिए जाने जाते हैं। असल में उनके काल्पनिक पात्र स्वामी को उन्हीं का रूप माना जाता है। उनके प्रसिद्ध कार्यों में स्वामी और उनके मित्र, मालगुडी डेज, द गाइड, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट और द इंग्लिश टीचर शामिल हैं। उन्हें मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ भारतीय अंग्रेजी साहित्य के शुरुआती दौर के तीन सबसे महान उपन्यासकारों में गिना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखे भारतीय लेखन से दुनिया को परिचित करवाया। अपनी रचनाओं के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1964 में पद्म भूषण और 1980 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर द्वारा एसी बेंसन मेडल उन्हें दिया गया और 2001 में 13 मई के दिन ही इनका निधन हुआ। कोटि कोटि नमन इस महान दिवंगत आत्मा को।
1: गाता रहे।
0: श्रोताओं, आर के नारायण ने द गाइड उपन्यास लिखा और उसी उपन्यास पर आधारित गाइड फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

सुबह सवेरे कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। श्रोताओं, आज भारत के पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती है। इनका जन्म 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रमुख राजनीतिज्ञ और राष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा करने वाले एक समर्पित नेता थे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य रूप से भाग लिया। उन्हें उनकी सादगी, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और राष्ट्रीय एकता में योगदान के लिए याद किया जाता है। फखरुद्दीन अहमद 1925 में इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। वे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, तभी से उन्होंने भारत की राजनीति से जुड़ने का फैसला किया। फखरुद्दीन अहमद नेहरू जी को अपना मेंटर मानते थे और इनके बीच अच्छी मित्रता थी। अहमद के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत 1928 में भारत वापस आने के बाद हुई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बने। थोड़े ही समय में वे नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के करीबी हो गए। इसके साथ ही स्वतंत्रता की लड़ाई में वे कूद पड़े। 1935 में फखरुद्दीन अहमद असम प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मुखिया के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद 1937 में वे असम लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम सीट से नवनिर्वाचित हुए और एक वित्त और राजस्व मंत्री भी बने। उन्हें असम राज्य की बड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई। कई बार उन्होंने जेल यातनाएं भी सहन की। 1940 में महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसके लिए भी उन्हें जेल जाना पड़ा। 1942 में इन्होंने भारतीय छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और फिर से एक बार जेल की यात्रा की। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1970 तक अपनी मृत्यु तक भारत के पांचवें राष्ट्रपति के रूप में काम किया और 11 फरवरी 1970 को अपने पद पर रहते हुए ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गए।

श्रोताओं, मान लीजिए आप दोपहर में किसी काम के लिए घर से बाहर निकले हैं। तेज़ धूप गर्म हवा के बीच कुछ देर के बाद आपका सिर भारी हो जाता है, आपको चक्कर आने लगते हैं और शरीर में अजीब सी थकान महसूस होती है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं श्रोताओं लू लगने के। तो गर्मियों में जो तेज़ हवा चलती है और जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको लू लगने की समस्या हो सकती है। तो इस लू से बचने के लिए आपको करना क्या है कि दिन भर खूब पानी पीना है, ORS नींबू पानी छाछ आपको पीते रहना है, ढीले कॉटन के कपड़े हल्के रंग के आपको पहनने हैं, सिर और चेहरा हमेशा ढक कर रखें जब भी आप घर से बाहर निकलें, और टोपी छाता या गमछा लेकर भी आप जा सकते हैं, और धूप का चश्मा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात और कि जब भी आप बाहर जाएं तो खाली पेट बिल्कुल भी ना जाएं, ये आपके बीमार होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि सुबह बच्चे स्कूल जाते समय भी कुछ खा कर नहीं जाते और ये उनके बीमार होने का कारण बनता है। और जब भी आप बाहर धूप में जाएं और घर में आते ही एकदम से ठंडे पानी का सेवन ना करें और ना ही एकदम से आकर AC के सामने या कूलर के सामने बैठ जाएँ, क्योंकि इससे एकदम से शरीर के तापमान में परिवर्तन आता है और जो कि बीमारी का सबब बनता है। तो श्रोताओं, मौसम गर्मी का है तो देखिए तापमान तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आप सावधानी रखेंगे तभी अपने आप को स्वस्थ आप रख सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमापार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट UG परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट UG के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसिलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए

0: प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamaraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
4: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the Whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
3: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's responsibility to promote scientific thinking. VCK General Secretary D. Ravi Kumar described the appointment as unacceptable in a secular government and urged reconsideration. All India NR Congress leader N. Rangasamy will be sworn in as the Chief Minister of Puducherry today. At a ceremony to be held at the Lok Nivas, Lieutenant Governor K. Kailashanathan will administer the oath of office and secrecy to Mr. Rangasamy. More from our correspondent.
5: In stark contrast,

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
2: एनपीएस पेंशन?
1: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
2: बुढ़ापा सुरक्षित?
1: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।

0: और अब सुनिए लोक संगीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, आवाज एक बार फिर से कपूर चंद की।
1: सिद्धि श्री नारायण लिख दी श्याम बरणी

लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कपूर चंद को। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और अब श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अलग अलग इस फिल्म के गीत के साथ, आवाज लता मंगेशकर की है, आनंद बख्शी के हैं बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

एक दूजे के लिए। लीजिए सुनिए इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। आनंद बख्शी के हैं बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत गोरा और काला फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी के लिखे हुए शब्दों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में कभी कभी फिल्म का नाम है। साहिर के बोल हैं संगीत खयाम का।

अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने। फिल्म का नाम है हवालात। गुलशन बावरा के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी? नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: यह है आखिरी रास्ता फिल्म का गीत, एस जानकी, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज है। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
7: 2 1 2 3

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति थानेदार फिल्म से इंदिवर के लिखे हुए शब्दों को अपनी आवाज़ दी है पंकज उदास, लता मंगेशकर और साथियों ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं शेषनाग फिल्म का गीत, आवाज अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है अमीरी गरीबी।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ ये वादा रहा इस फिल्म का गीत। गीत है गुलशन बावरा का, संगीत आर डी बर्मन का।

इसी गीत के साथ हमारा आज का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 10 बजे

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी ने आज पुद्दुचेरी की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुद्दुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में ये पांचवा कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुद्दुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन ना करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बीच कल रद्द कर दी गई थी। सरकार ने सीबीआई को अनियमितताओं की व्यापक जाँच के निर्देश दिए हैं। वैश्विक ईंधन में कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के बेड़े में 50% वाहनों की कमी का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावित हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के इच्छुक लोगों से 19 मई से पहले आवेदन करने का आग्रह किया है। इस यात्रा के लिए पंजीकरण जल्द ही बंद होने वाले हैं। इच्छुक आवेदक आधिकारिक वेबसाइट kmy.gov.in पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पंजीकरण करा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक शुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों से

देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 11 runs. Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10:10 और 12 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। हमारी दूसरी सभा में दिन के 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच और न्यूज़ जोन AIR पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:15 हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ में सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
1: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं, और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
2: तो श्रोताओ, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।

0: इनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
1: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थी, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थी।
2: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80 90 पूरे 100 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा।
3: अब तेरी बारी है,
4: तेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
3: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
4: तो कहानी सुना दो भाई।
3: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौए ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
4: अच्छी कहानी थी भाई, कौए ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
3: हाँ प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
4: हाँ चलो चलो, वहाँ
3: चलो
4: पे पानी
3: चलो
4: होगा।
3: चलते
1: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
5: कौन है
4: दीदी?
5: कौन है
4: दीदी?
3: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
4: अम्मा जी हमें बहुत प्यास लगी है,
3: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
3: हाँ अम्मा,
4: बहुत ठंडा पानी था।
3: लेकिन अम्मा आप कौन है?
6: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
4: कौन है आप?
6: नहीं समझे?
4: नहीं।
6: अच्छा तो फिर ये पहेली सुनो।

0: खा जलते हैं।
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम। ओ,
1: अब
0: आप
1: गर्मी
0: गर्मी अम्मा
1: अम्मा है।
2: हैं। बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू, यानी यानी शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई, मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ
0: चलो
1: चलो अम्मा,
0: आ,
1: चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ

0: गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
0: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
3: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: अम्मा, दे दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
3: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
3: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल?
2: नहीं समझी?
1: नहीं।
2: अच्छा तो फिर सुनो।

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो, आइसक्रीम।
2: बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना।
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा,
4: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: What you heard right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, रुको! जाओ वहीं, रुक जाओ, रुको!
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाया हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काक्सर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
7: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
2: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
7: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
7: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
2: जी,
8: यस सर।
7: ये मेज के चारों ओर।
2: जी सर।
8: उधर से।
2: हाँ। जी,
7: तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
2: जी सर।
7: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
2: जी सर।
7: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
2: जी सर।
7: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
2: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
7: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
9: यस सर।
7: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
2: जी जी सर।
7: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
2: सर, जी सर।
7: कोई शक?
2: नो सर।
7: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
9: यस सर।
2: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
8: धीमे बोलो, धीमे।
2: जी,
8: उन्हें पता ना चल जाए।
2: जी सर।
8: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
2: जी।
8: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
2: ठीक है सर।
8: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
2: जी सर। जी सर।
8: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
2: जी सर।
8: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे,
2: ओके, धीरे।
8: तबे बहुत बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
2: रेंगेंगे। जी सर।
8: कोई भी उठ सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
2: हाँ सर।
8: एवरीबॉडी रेडी?
9: यस सर।
2: यस सर।
8: अब हथकोला फेंको।
7: गुड, वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया।
2: आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। 1 बजने वाला है, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का समय है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा

0: सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रभदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में पूरी सुरक्षा के बीच नगर निकाय चुनाव के लिए पड़े मतों की गिनती जारी है। अभी तक अधिकतर जगह पर भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अंबाला नगर निगम में महापौर पद के लिए भी भाजपा प्रत्याशी अक्षता सैनी 21,358 मतों से चुनाव जीत गई है। उन्हें कुल 52,794 वोट मिले हैं। इस बीच पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 6, 8, 9 और 10 के सदस्य के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। वार्ड नंबर 6 से भाजपा के पार्थ गुप्ता 866 मतों से विजयी हुए। वार्ड नंबर 8 से भाजपा के राजकुमार जैन ने 948 मतों से और वार्ड नंबर 9 से भाजपा के हरेंद्र मलिक ने 1623 मतों से चुनाव जीत लिया है। वार्ड नंबर 10 से भाजपा के शेखर विजयी हुए हैं। उकलाना नगर पालिका में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार निकिता गोयल को हराया। सोनीपत नगर निगम में सदस्य पद के लिए चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। वार्ड 1 से कांग्रेस के जय कुमार खत्री 270 वोट से जीत गए हैं। जय कुमार खत्री ने 3240 वोट हासिल कर भाजपा के निवर्तमान पार्षद हरिप्रकाश सैनी को 270 वोट

से हराया। भाजपा प्रत्याशी हरिप्रकाश सैनी को 2970 व निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट मनीष सैनी को 2840 वोट मिले। वार्ड नंबर 2 से भाजपा के मुकेश ने जीत दर्ज की। मुकेश ने 3405 वोट हासिल कर पूर्व पार्षद सुरेंद्र नैयर को 1532 वोट से हराकर जीत हासिल की। सुरेंद्र नैयर ने 1873 व कांग्रेस प्रत्याशी पवन ने 1576 वोट हासिल किए। वार्ड 3 से बीजेपी के सुरेंद्र मदान ने 3732 वोट हासिल कर कांग्रेस के अनुज छाबड़ा को 1081 वोट से हराकर जीत हासिल की। अनुज छाबड़ा को 2651 वोट मिले थे। सोनीपत नगर निगम से राजीव जैन 23,247 वोट से महापौर पद का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के कमल दीवान को हराया है। पंचकुला में नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए 8वें राउंड के परिणाम में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 14,894 वोट से आगे हैं। भाजपा के श्यामलाल बंसल को अब तक 25,558 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 10,704 वोट मिले हैं। राजेश कुमार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 1426 वोट के साथ तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। वहीं अभी तक नोटा को भी 550 वोट मिले हैं। सांपला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 687 वोट से जीत हासिल की। प्रवीण कोच को 4,391 वोट जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अंकित ओहलेयान को 3,704 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा भी 6200 वोटों से जीत गए हैं। भाजपा के अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले जबकि बाबूलाल लांबा को मिले 3,156 वोट और वे दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने सदर बाजार चौक का नाम महाराणा प्रताप चौक रखने और नीकलसन सड़क का नाम महाराणा प्रताप सड़क करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद अंबाला सदर के कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए उन्होंने आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने अपने स्वैच्छिक कोष से 50,00,000 रुपए की राशि प्रदान की थी। श्री विज द्वारा 9 मई को महाराणा प्रताप जी की जयंती के दिन सदर बाजार चौक पर महाराणा प्रताप की 12.5 फुट ऊंची और 16 क्विंटल वजनी मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। निस्वार्थ रूप से मरीजों की सेवा व मातृत्व भाव से मरीजों का इलाज करने के उद्देश्य से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती को कल अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर भिवानी के सामान्य अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर लगाकर नर्सिंग अधिकारियों को सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने नर्सिंग दिवस मनाए जाने के पीछे के इतिहास की विस्तृत जानकारी दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

कुमार सानू की आवाज़ में शिकारी फिल्म का गीत आपने सुना। समीर के बोल थे, संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। पसंद आप सभी की थी। आप हैं मलोट कैंप से सतीश मिकलानी, सीमा शाइना, विशाल सुप्रिया अनमोल, धर्म सिंह विवान, रमेश मिकलानी, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक तन्नू, बनियापारा धमतरी से रामचंद मखीजा, शंकरलाल राहुल, शरद कुमार लक्की, अमित, सविता, स्वाति, दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्नवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, विपुल कांबड़े, करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता ढिल्लों, संदीप गोगलानी, सुनीता शर्मा, महेंद्रगढ़ से विकास गांधी, ममता वंश, दिया नोनू, शगुन गांधी, रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर और जयतक बेरक। और अब सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की पसंद का गीत। आप हैं बलियाली से दर्शनलाल बंसल, सुदेश प्रवीण ममता, कमल गर्विश, तमन्ना बंसल, बुच्चो कैंथिया से प्रेम जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंद्र, वीरेंद्र, सीमू एकम, महेंद्र भट्टी, दिलप्रीत। और ये अगला खत है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और ये हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पॉल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। ये हैं हमारे श्रोता परिवार में नए श्रोताओं का आगमन। और आप हैं पजोनिया यूपी से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, आराध्या, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, कपिल, किरण, कुणाल मेहरा, इंचल करंजी, कोल्हापुर से बसंत जी हजारे, आमोद हजारे, महेश, मिंताशु, आदित्य, फजिलका से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, टिवांसी, शालिनी, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह। और करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब नावेद और इरशाद भाई। आप सभी के लिए झूम बराबर झूम फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ें आप सुनेंगे। बोल गुलजार के हैं, संगीत है शंकर एहसान लॉय का। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

ये था झूम बराबर झूम फिल्म का गीत। राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी अय्यर ने इसे गाया। अगला गीत सुनवा रहे हैं आप सभी के अनुरोध पर। आप हैं शिटपुर जैन धुले महाराष्ट्र से, माधुरी जोशी, जयश्री, गिरीश, सोनाली, मनीषा, मौसमी, संगीता मीनाक्षी, विपिन, रेणुका, राणा जी, अश्वनी, सविता वसमतकर और इनके साथी। सांखोल बहादुरगढ़ से सुंदरलाल तंवर, बिरखाराम तंवर, भगवानी, नीरज और इनके साथी। नांदेड़ यताला से शंकरलाल जायसवाल, रामलाल, गुलाबलाल, गणेशलाल, शुभम प्रसाद, मीनाक्षी, दुर्गेश्वरी और ज्योति। झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा मयंक, रजत भाटिया। भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण, पवनीत, नीति, विक्रमजीत ग्रोवर। और आप हैं चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश लहरे, कालिंद्री लहरे। सिरसला जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा और सोनगरा परिवार के अन्य सदस्य। पदमपुर से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत। और आप हैं मोहला से राजकुमार ढोचक, गीता मनसानिया, सुभाष, उषा, राहुल, रोहित, जोगेंद्र, दर्शना, इंदु और यक्षित। आप सभी की पसंद पर दुश्मन फिल्म का गीत आनंद बख्शी का रचा हुआ, संगीत उत्तम सिंह का है। कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ें आप सुनेंगे।

दुश्मन फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, उत्तम सिंह का संगीत था, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब नायक फिल्म का गीत सुनते हैं। आनंद बख्शी ने रचा है, AR रहमान का संगीत है, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें आप सुनेंगे। पसंद आप सभी की है। आप हैं औरई मुजफ्फरनगर से मोहम्मद फैजल शेख, नुजत जहां नाज, बराड़ा अम्बाला से रवि रणजीत कौर, ज्योति आकृति जय, साधुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश, डोंडी लुहारा दुर्ग से देवशंकर तामुरिया, अजय रोशनी, पूजा तुषार, प्रभा देवी, शीशगढ़ बरेली से इलियास इद्रेसी, अमजद यासीन इद्रेसी, डबवाली से विजय बंसल, दीपू उषा मोहित बंसल, हिरणा छप्पर से सतपाल पंजेटा, राजपाल राय राम सिंह पंजेटा, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल सितारा, हिना कौसर, विष्णु अग्रवाल, पदम सैनी, प्रवीण, रोजी, सजदा, बिट्टू भैया, अरसलान, वासित फरीदी, उमर फरीदी, आलिया मुनीबा, जोया अयान फरीदी, बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु, अंकित सच्चा खेड़ा से बलबीर सुरेश, वेद बिहारी जगदीश, सिरसल से पवन शर्मा, बाला शर्मा, जयश्री और भाविक शर्मा। आप सभी की पसंद पर नायक फिल्म का गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें।

नायक फिल्म का गीत उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में गाया हुआ आपने सुना। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं अपने इन सुनने वालों के अनुरोध पर गीत। अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार सुनीता, कुलदीप गांधी। मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरभ शर्मा। यहीं से रमेश जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया। नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, गगन, सोनी, जैस्मिन, रेखा। कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी, प्रांजल। महसूल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत बेगम, अबीहा रुबीना, साजिया शाहिन नाज, अरहान नाजिया, नूरी नाज, हमजा बाबू, तैमूर बाबू, चीना, बच्चू शेख, हुमायरा नाज और मुजम्मिल बाबू। सुनाम से कृष्ण कत्याल, मुकेश, राजेश कत्याल। पांडुपिंडारा से बादल सिंह गिल, प्रीति टीनू, डॉक्टर अंकित, कमलेश गिल। रामराय जीन से गंगा सिंह, उषा, सीमा, पूजा, परविंदर, विजेंद्र, झंडूराम। खैरका सिरसा से इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सरगुन और हनी लोट। आप सभी की पसंद का गीत है शिकार फिल्म से उदित नारायण और अर्का याग्निक की आवाज़ों में गाया ये गीत। आनंद राज आनंद ने संगीतबद्ध किया है और लिखा है प्रवीण भारद्वाज ने। इन सब के साथ आइए हम भी सुनते हैं।

ये था शिकार फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ें आपने सुनी। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लव आजकल फिल्म से। सुनने वालों के नाम आपको बताएंगे गीत के बाद।

ये आपने सुना लव आजकल फिल्म का गीत राहत फतेह अली खान ने गाया, इरशाद कामिल के बोल थे, संगीत था प्रीतम का। पसंद आप सभी की आप है मोपका भाटापारा से भवेंद्र साहू, लक्की हर्षित सुमित्रा, मोवा रायपुर से गोपेंद्र साहू मंजू साहू, लच्छनपुर से रामजी जीवनलाल रजक, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्राजक्ता प्रांजलि सोहम, अंशुमन ओवी दक्ष प्रसाद, सागवन भिवानी से पालाराम गुर्जर, शमशेर सुमन रवि, बलजीत पवन मंगू और इनके साथ ही कृष्णा पार्क से सुखविंदर जोड़ा, अमृत कौर, गुरवंश सिंह, खुर्जा से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अंकुश अरोड़ा। और अब अगला गीत सुनते हैं अपने इन सुनने वालों की पसंद का। आप हैं घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, मोहब्बत बेगम, हुमा जावेद तखान शनाया, आहत सुहान अरजान महक, नैनवी छवि अमायरा, रटलाई झारावाड़ से हर्षिता रामेश्वर, कान्हा सफलता कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, चंडीगढ़ से सतीश बिमला जी अनेजा, मंखू पंजाब से बिल्ला बजाज, मुनीश बजाज, हैप्पी कपूर, बेहरामपुर टेमा खरगोन से त्रिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा, सचिन, श्वेता, अंजलि, समर राज, आर्यन, आरोही, ईशिका वर्मा, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति, गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही, हुस्ना बेगम अंसारी, यहीं से खिल्लू परवेज, इमराना नाज, नवाजिश, दानिश शेख, अमन आफरीदी।

ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण लव्या खुराना, मेघा आशीष, विशु साक्षी, अनुज छोटू खुराना, मंडी हरजीरा मलोट से महेश गर्ग, सुषमा जश्न गर्ग, चीनू मोरीगेट दिल्ली से कन्हैया लाल, रीता शिल्पा और आकाश। मुजफ्फरनगर बगलामुखी से ममता गुप्ता, शांति गुप्ता, निखिल, नमन राज, तन्मय, कोली से नारायण गायकवाड़। और ये पत्र है गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्ज़ा नसरीन बेगम, बादाम अली, अफसाना बेगम, अरबाज खान, शहबाज, पप्पू भाई, महजबी, किशमिश जहां बेगम। यहीं से मोहम्मद इकबाल सलमानी, यासिन सलमानी, फैज़ान, नाजिया, मोमिन सलमानी। हनुमानगढ़ से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान, आहिल खान, जीशान खान। गांव डेर पाटन गुजरात से धीरज बी रब्बारी, संजय सचिन। खंडवा कुंदा नगर से ध्रुवांश सोनवणे, सुनीता सोनवणे, खुशी प्रियांश, आशीष, कृष्णा शुभम, श्रीवांस खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि, संदीप, पिंटू, जयश्री, यथार्थ। मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशु। आप सभी की पसंद पर तारा रम पम फिल्म का गीत शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में गाया हुआ आपको सुनवा रहे हैं। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत तैयार किया है विशाल शेखर ने। आइए सुनते हैं आज के आपके अनुरोध पर कार्यक्रम का ये आखिरी गाना।

आपने सुना आपके अनुरोध पर कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में NDA की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर NDA में विचार विमर्श

0: जारी है। बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
4: श्री फ्रांसिस को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भैया ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों देखो गर्मी का मौसम है और एक आध बार तो बहुत ज़्यादा गर्मी बन गया है और इब समझो कि जो जो जेठ का महीना है वो भी अधान्न हो रहा है और इस समय में गर्मी का होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ भी है। लेकिन कल शाम से कुछ मौसम में बदलाव भी बना हुआ है और कई जगह पर तो ओले कांकड़े भी आए हैं और जिस तरह जो हमारी सब्जी फसल हैं उनको नुकसान भी हुआ है। बाकी हमारा ज़्यादातर जो एरिया क्षेत्र है वो तो खाली है क्योंकि गेहूं की हमारी फसल है वो हमने काट ली और जो तूड़ा है वो भी लगभग बना लिया। लेकिन कुछ भाइयों से एक अनुरोध कराया जा है कि वह जो बचे हुए फांस हैं तूड़ा बनाने के बाद भी जो छोटे छोटे बचे हैं उनमें आग ना लगाएं क्योंकि उनके लगाने से हमारे जो फल वृक्ष हैं छोटे हैं या फिर जो दूसरे पौधे हैं वो भी जलकर और ख़राब होने लग रहे हैं। इसलिए हमने किसी भी सूरत में अपनी ज़मीन

ऊपर आग है, फांसों के अंदर नहीं लगानी है। बाकी इसमें देखो, हमारी जो सब्जी फसलों की बात करें, जो बेल वाली सब्जी फसल हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें बनाया है, जो ओड़ा काकड़ा जहाँ पर भी गिरा है और फसल उसकी चपेट में आ गई, क्योंकि जो पत्ते हैं वो जहाँ पर भी ओड़ा या काकड़ा लग गया है तो उसने वो छलनी हो जाए हैं, और जो फूल लगे हुए हैं वो भी जड़ जाए हैं, जो नबेड़ बनी हुई हैं वो भी जड़ जाए हैं। तो भैया देखो, ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है, इसमें तो कुछ निकाल जा सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी जो फसल है उसका ध्यान रखेंगे तो उसमें ज़रूर हम थोड़ा बहुत जो लाभ है वो कर सकते हैं। और विशेष बात है कि जब बात सब्जी फसलों की चल रही है, तो जो भिंडी की फसल है, यदि वो हमने लगा रखी है तो उसमें कुछ करने के काम हैं। और उनमें भाई देखो, सबसे पहला तो करने का ये काम है कि भाई जो नुलाई गुडाई है वो हम ज़रूर करें, और नुलाई गुडाई से भी पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि भाई सिंचाई करें, और सिंचाई हमेशा हमने गर्मी के मौसम में बिल्कुल हल्की करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हम करते हैं तो उससे फिर जो पानी है वो हमारी फसल के अंदर खड़ा रह जाएगा, और जब हमारी फसल के अंदर पानी खड़ा रह जाएगा तो फिर उसने जो जड़ हैं वो गलना शुरू हो गया है, जो पौधा है वो मुरझाना शुरू हो गया है, और जब गर्म पानी हमारे पौधे के पास में खड़ा रहेगा तो वो नीचे की जो जड़ हैं उनको ख़त्म कर देगा। इसलिए हमने जो सिंचाई करनी है वो समय समय का हिसाब तो करते रहना है, और उसके अंदर भी बिल्कुल हल्की सिंचाई करें, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो भिंडी की जो फसल लगा रहे हैं वो डोलियों के ऊपर लगा रहे हैं, और जब डोलियों के ऊपर हमने लगाई है तो जो नीचे का हिस्सा है वहाँ तक हमने उसमें पानी डालना है, ऊपर का जो एक तिहाई का हिस्सा है उसके ऊपर पानी नहीं लगाना है, क्योंकि सिर्फ जो पौधा है वहाँ तक उसकी नमी जानी चाहिए, ना कि पानी। यदि पानी जावे है तो फिर उसमें दिक्कत आवे है, और कई बार के है कि भाई हमारी ज़मीन पानी नहीं पीती, तो इस कारण हमने जो भी भिंडी की फसल में पानी दे रखा है और वो पानी खड़ा है तो उसको हमने नीचे उतार देना है, और उसके अंदर वो खड़ा पानी डोलियों के अंदर नहीं रहना चाहिए। बाकी इसमें भिंडी की फसल में और कुछ जो भी देखभाल करनी है उसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनेंगे रागनी मास्टर रामफल शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई।

गौतम की नारे अहिला जिसके विष्णु भी आया था हिर के अर्जुन की नारे सुभद्रा जिन अभिमन्यु हिर जाया था के घड़ी रुकमणि कुंदनपुर में जिन कृष्ण ब्याके

किसकी जाई और किसके ब्याही, किसकी जाई किसके ब्याही, ओए किसका पकड़िया फटका से लरज लरज के पांचे के जानू

भैया ने ये तो सोनी रागनी मास्टर रामफल शर्मा और उनके साथियों की गाई हुई। तो भैया इसमें खेत खलिहान में हम चर्चा कर रहे थे जो भिंडी फसल है उसकी देखभाल के बारे में, और उसमें सबसे जो पहली हमारी देखभाल है यही है कि भाई उसके अंदर नमी हमने बनाकर रखनी है। पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि भाई हम उसमें पानी रखें, क्योंकि पानी रखेंगे तो फिर जड़ है उसमें गड़ने की बड़ी दिक्कत रहेगी। इसलिए हमने जो थोड़ी ही नमी है वो रखनी है, और नमी को हमने ठीक ढंग से बनाए रखना है। और एक इसमें जो खरपतवार नियंत्रण की हम बात करें वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जिस समय भी हम मान लो डोड़ियों को ऊपर से बचा कर रखेंगे तो फिर खरपतवार हैं उनमें फ़र्क ले रहेगा, लेकिन जब डोड़ियों के अंदर बीच में यदि खरपतवार बने हैं तो उसको हमने निकाल देना है। वो चाहे हम कसोले से निकाल लें, दांती से निकाल लें, खुरपी से निकाल लें या हाथ से निकाल लें, जैसा भी, उसमें खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और जो सिंचाई है वो ठीक समय पर हमने करते रहना है। इसमें बात आ जाए भाई खाद की और उर्वरक की, क्योंकि जब मान लो हम जिस समय इसके अंदर मान लो फूल है फल है बनना शुरू हुआ है उससे पहले हमने इसमें खाद देना बहुत ज़रूरी है। और शुरू में जैसे हमने DAP दिया है, उसके बाद जो हम सिंचाई करें, एक सिंचाई के बाद मान लो हम पहली सिंचाई करें उसमें पर भी हमने जो हमारी एक तिहाई की जो यूरिया की मात्रा हमारी थी वो हमने देनी है। बाकी इसमें कुछ जो सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट हैं यदि हम उनकी बात करें, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी बात करें, तो वो भी हम दे सकते हैं। और उसमें जैसे हम जैसे चिलेटेड जो जिंक है वो भी आवे है, और कुछ यूरिया है और कुछ DAP, इन चीज़ों का भी घोल बनाकर कुछ हमारे जो किसान भाई हैं जो सब्जी पैदा करने वाले भाई हैं वो इनका भी प्रयोग करें हैं। और उसमें जैसे ही हम शुरू वाली जैसे तुड़ाई करें उसमें इस बात का ध्यान दें कि भाई जो हमारी जो खाद है वो देनी है, और उसके बाद जो दूसरी तुड़ाई करें उसमें भी इसमें हमने खाद देनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या है कि जो हम खाद दे रहे हैं उसकी मात्रा यदि हम ठीक देते हैं तो जो शुरू का जिसको हम ये कह दें भाई शुरू की जो तुड़ाई है वो यदि सही हो जाए तो दूसरी तुड़ाई हमने जब मिलेगी जब हम उसके अंदर जो उसका उसके जो खाद हैं यदि वो हम दे देंगे तो। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि भाई जो मान लो कीड़े भी आ जाए हैं,

बीमारी भी आ जाएँ। यदि हम उनका समय समय पर दवाई का प्रयोग कर दें, और जैसे फंगस आ जाए हैं उसका भी हम दवाई से मान लो फंगिसाइड का प्रयोग कर दें, तो फिर हमारी जो पैदावार है वो हमें ठीक भी मिल जाए है। बाकी इसमें हमने इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि भाई एक तो सिंचाई समय पर करना है, जो खरपतवार है वो समय पर निकालते रहना है, और एक जो तुड़ाई करने से पहले हमने जो हम मान लो दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले हमने फलों को तोड़ लेना है, उसके बाद जो दवाई का उपयोग है वो करना है, इस बात का ध्यान करना है। और यदि हम इन कुछ बातों का ध्यान करेंगे तो जो भिंडी फसल है उससे हम अच्छी बढ़िया पैदावार ले सकें। भाइयों, ई बे जो खेत खलिहान कार्यक्रम का समय समाप्त, सारे बाण भैया ने राम राम।

0: आपने सुना खेत खलिहान कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारी बेड़िया में। तो श्रोताओं, आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का विषय बहुत ही गंभीर है और कहीं ना कहीं हमारे दिल में गहरा असर डाल सकती है। जी हाँ, दहेज। दहेज समाज में एक सामाजिक अपराध है जो महिलाओं पर कल्पना से परे प्रताड़नाओं तथा अपराधों का कारण है। इस अपराध ने समाज के सभी तबकों की महिलाओं की जान ली है, चाहे वे गरीब हो, मध्यम वर्ग की हो या धनाढ्य हो। लेकिन आज के समय में सभी इस जाल में फंसते हैं एवं शिकार होते हैं, जिसका मुख्य कारण है जागरूकता का अभाव और लालच। जी हाँ श्रोताओं, मनुष्य में बढ़ता हुआ लालच। दहेज वर्तमान समय में इतनी बड़ी समस्या है कि इसके कारण कई बेटियों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है। शादी विवाह के बीच दहेज की चर्चाएं भी समाज में अक्सर सुनने में मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर।
2: माँ, आप इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: बस थोड़ी सी चिंता है।
2: कैसी चिंता माँ?
3: वो रमा काकी से बात हुई थी आज, तो वो बता रही थी कि उनकी बेटी सुनीता की शादी हुई है। अब तो जो सुनीता के समधियों ने दहेज मांगा था, तो बेचारी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने किसी से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी करवाई।
2: क्या, उधार लेकर?
3: हाँ बेटा, अब बेचारी बड़ी परेशान है। कमाई वैसे ही कम है भाई साहब की, ऊपर से ही कर्जा उतारने की टेंशन।
2: पर माँ, ये तो बहुत ही गलत बात है।
3: गलत तो है बेटा, पर ये समाज नहीं समझता। अगर वो दहेज नहीं देती तो उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं होती और ना ही समय से हो पाती।
2: सुनीता आंटी की बेटी खूब पढ़ी लिखी और समझदार है, इतनी प्यारी लड़की की शादी तो यूं ही हो जाती है, उन्हें दहेज देने की जरूरत कहाँ थी। आप तो जानती है ना माँ, दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध है। आंटी के पास इतना होता और वो अपनी खुशी से देती तो बात और थी, पर दबाव में और उधार लेकर दहेज देना अपराध है। आंटी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया माँ।
3: बेटा, अपने बच्चों के आगे सही क्या और गलत क्या, बस अपने बच्चों की खुशी ही नजर आती है।
2: नहीं माँ, गलत तो गलत ही है ना, सब ऐसा करेंगे तो समाज में सुधार की शुरुआत कैसे होगी।
3: तू अभी नहीं समझती है, कुछ ही 100 में से कोई एक दो होंगे जो ये बात समझते होंगे। बाकी लोग जो समाज में है ना, उन्हें नहीं समझाया जा सकता। समाज का जो चलन है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
2: तो क्या माँ, कल को कोई मेरी शादी के लिए भी दहेज मांगे तो आप दे दोगे?
3: बेटा, अब मुझे यही तो चिंता है, बेटी तेरे बाऊजी तो है नहीं, मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी, शादी में तो सब देना ही पड़ेगा ना।
2: आप कैसी बातें कर रही हैं? अभी आपने ही कहा ना ये सब गलत है, फिर भी आपको करना है, समझ तो आप भी नहीं रही हैं। दहेज देना गलत है और इसमें मैं आपके साथ नहीं हूँ माँ। अगर ऐसी ही चिंता है आपको तो मुझे शादी ही नहीं करनी।
3: अरे तू पागल हो गई है क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही है बेटा?
2: देखो माँ, गलत का साथ मैं नहीं दे सकती और ना ही मैं आपको ऐसी चिंता में देख सकती हूँ, तो अब सारी चिंता खत्म।
3: नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, परसों तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तुम ऐसा कुछ मत करना बेटी, तुमको मेरी कसम है।
2: अरे माँ, मतलब आप चाहती हैं भले आपकी बेटी दुखी हो जाए पर उसकी शादी होनी ही चाहिए।
3: बेटा, ऐसा तो नहीं चाहती मैं, बस मैंने इतना कहा है, तू परसों कुछ मत कहना, मैं देख लूंगी अपने आप।
2: ठीक है, अभी आप सो जाइए और चिंता मत कीजिए। ईश्वर, मैंने सुना है कि आप हो और मेरा ये विश्वास है कि आप हो और जीवित हो, हमारी प्रार्थनाओं को भी सुनते हैं आप। हे ईश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस दहेज प्रथा के विरोध में, जो समाज में डर है, सब चुप हैं, दहेज लेने वालों को कोई रोक ही नहीं रहा और आज ये मेरे जीवन में भी आन पड़ी है, माँ ने मुझे कसम दी है कि मैं कुछ ना कहूँ और आप जरूर कुछ कर सकते हैं। प्लीज मेरी इन हालातों में मेरी मदद करो, मुझे सही राह दिखाओ कि मैं सही निर्णय ले पाऊँ और जो भी परसों आ रहे हैं मुझे देखने वो समझ पाए और माँ को भी मैं समझा पाऊँ। प्लीज मेरी मदद करो, परमेश्वर जरूर कुछ अच्छा करेंगे। बाकी तो संभाल लो खुद को सुमन, जो होगा अच्छा ही होगा परसों।
4: माँ आप समझ क्यों नहीं रहे हो, दहेज मांगना सही नहीं है, यह एक कानूनन अपराध है।
5: बेटा इतना बोलने की इजाजत मैंने नहीं दी है तुझको, तू शांत रह तो ही अच्छा होगा। सुबह से देख रही हूँ बोले जा रहा है, अगर वो अपनी बेटी की खुशी से कुछ देना चाहती है तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है।
4: माँ पहली बात तो उस लड़की के पिताजी नहीं है और दूसरा मैं आपको जानता हूँ, वो खुशी से दे या ना दे पर आप जरूर दबाव डालोगी उन पर।
5: बस अब चुप।
4: माँ हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे सिर्फ मेरे लिए एक अच्छी जीवन साथी चाहिए ना, वो अपनी पढ़ी लिखी बेटी दे रहे यही मेरे लिए काफी है।
5: जब समाज वाले पूछेंगे हमसे कि क्या मिला और मिला जी, बेटे की शादी तो करा दी, तो क्या कहेंगे हम कि हमें तो एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की जो हमारे बेटे के लिए अच्छी जीवन साथी है और हमारी अच्छी बहू है जो हमारा घर संभालेगी, ये कहेंगे क्या।
4: हाँ बिल्कुल ऐसा ही कहना है।
5: चुप रहो तुम, हंसेंगे समाज वाले हम पर, अब हमें कुछ सुनना नहीं है, चुपचाप चलो और अपना मुंह बंद रखना।
4: मैं आपके इस फैसले से खुश नहीं हूँ, आप हमेशा ही सामान देखती हैं, कौन कितना दे रहा है, अगर दहेज ही चाहिए ना तो इतना पढ़ाया लिखाया क्यों। माँ मुझसे नहीं होगा ये जानते हुए कि दहेज लेना जुर्म है, और मैं आपका साथ दूँ, आपको जो देखना है वो देखो, जो मुझे देखना होगा वो मैं देख लूंगा।
5: बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होगा।
6: अरे उर्मिला जी।
7: हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते
6: जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, कैसी हैं आप।
7: हम तो बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
6: को आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना।
7: नहीं नहीं दिक्कत कैसी, बस कार में बैठे और पहुंच गए।
6: सुमन जरा पानी लाना बेटा।
2: नमस्ते आंटी।
7: नमस्ते नमस्ते बेटा, ये तो आपकी बेटी है ना।
6: जी।
7: सुंदर तो है।
6: जी आपका बहुत शुक्रिया।
7: आओ बेटा बैठो इधर, कहाँ तक पढ़ाई की है तुमने।
2: एमए बीएड किया है।
7: ओ पढ़ाई तो काफी की है, बस घर में ही रहती हो या कुछ काम भी करती हो।
2: जी पास के स्कूल में पढ़ाती हूँ और बस घर के काम में माँ की मदद।
7: अच्छा जी, दो मिनट। हाँ बेटा कैसी लगी तुम्हें।
4: माँ मुझे सुमन पसंद है, इसके व्यवहार में जो सादगी और सरलता है, बस ऐसा ही जीवन साथी मुझे चाहिए।
7: तो मैं आगे की बात कर लेती हूँ फिर, बस तुम अपना मुंह बंद रखना।
4: उसका कोई मतलब नहीं, माँ मैंने जो आपको घर पर कुछ कहा था।
7: कहा तो मैंने भी था तुमसे, तुमसे वो होगा कि नहीं, मैं तुमसे वही चाहूंगी जो मैंने कहा है। चुप रहना अब, जितनी तुम्हारी राय चाहिए थी उतनी ले ली मैंने। हमारी तरफ से तो हाँ है।
6: सच कह रही हैं क्या आप।
7: हाँ भाई, इसमें झूठ बोलने

0: वाली क्या बात है। वैसे कांता जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी है आपसे।
1: हाँ पूछिए ना।
0: शादी में अपनी बेटी को क्या भेंट दे रही हैं आप? वैसे इस बारे में कुछ सोचा है आपने? अब क्या है ना कि हमारे घर में तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ है, पर समाज में दिखाना तो पड़ता ही है।
1: हाँ सही कह रही हैं आप। वो क्या है ना, बात ऐसी है कि सुमन के बाऊ जी तो है नहीं। सुमन और मैं इतना ही कमा पाते हैं कि बस घर चल जाए। फिर भी मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपनी बेटी को जरूर दूंगी।
0: अरे कांता जी, देखिए अब हमें क्या है कि हमारे लेवल के हिसाब से समाज में दिखाना भी पड़ेगा।
1: तो आप बताइए फिर मुझे, तो मैं उस हिसाब से फिर तैयारी करूंगी।
0: बस वही 4-5 तोला सोना, डबल बेड, वॉशिंग मशीन, एक बड़ी सी गाड़ी, और इसके अलावा जो भी आपके मन में हो वो दे दीजिए।
1: जी इतना सब?
0: क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं हो पाएगा आपसे?
1: नहीं, मैं कर लूंगी।
2: एक मिनट आंटी, मुझे एक दुविधा है।
0: हाँ बेटा बताओ।
2: आप आपके बेटे के लिए जीवन साथी देखने आई हैं या अपने घर के लिए सामान?
0: क्या मतलब है तुम्हारा?
2: आपने अभी जो ये लंबी सूची पकड़वाई है, लगता है आपको सामान चाहिए।
0: बेटा जब बड़े बात कर रहे होते हैं बीच में मत बोला करो।
2: क्यों आंटी, आपको पता नहीं है दहेज मांगने पर क्या हो सकता है?
1: अरे बेटी चुप कर तू,
0: बहुत ही बदतमीज बेटी है आपकी।
3: सही कहा माँ आपने, बदतमीज तो बिल्कुल है, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा बदतमीज ही होता है। पर ऐसे सच बोलने वाली सचमुच मुझे पसंद है।
0: तुझे मैंने घर पे कुछ समझाया था ना?
3: जी माँ, और मैंने भी आपको ये जो अभी आपने लिस्ट दी है ना, इसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
0: क्या जेल? वो कैसे?
3: हमारे देश की सरकार ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत से कानून बनाए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता IPC के तहत बनाए गए हैं, जो दहेज लेने, देने और मांगने का अपराध मानते हैं। इस कानून के तहत दहेज के लेने देने पर 5 साल की तो कैद है और 15,000 तक का जुर्माना भी है माँ।
2: सही कहा है इन्होंने, अपराध को सहने वाला भी बराबर जिम्मेदार होता है। जितनी सजा दहेज लेने वाले के लिए है, उतनी ही सजा दहेज देने वाले के लिए भी है माँ।
3: हमारी सरकार इतने कानून बना रही है, इतना सोच रही है इन प्रथाओं को रोकने के लिए, और हम भी सहयोग नहीं करेंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ सकता है?
1: मुझे माफ कर दे समन बेटा, तूने मुझे इतना समझाया फिर भी मैं नहीं समझी। माफ कीजिएगा उर्मिला बहन जी, मेरी बेटी की शादी तो मैं वहीं करवाऊंगी जहां उसकी खुशी हो और जहां दहेज देने के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए। और संदीप बेटा, शुक्रिया बेटा, तुम बहुत ही नेक और समझदार लड़के हो।
0: नहीं नहीं कांता बहन, मुझे जेल नहीं जाना। आपका तो पता नहीं, पर मेरा बेटा मुझे जेल जरूर पहुंचा देगा अगर मैंने दहेज मांगा तो। मुझे भी अपनी गलती समझ में आ गई है, अब मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, वो भी सिर्फ आपकी मर्जी से और खुशी से।
1: तो फिर रुकिए, अभी मिठाई लेकर आती हूँ मैं समधन जी।
0: जल्दी कीजिए।
3: थैंक यू सुमन, आपने आवाज उठाई तो मुझे भी हिम्मत मिली।
2: थैंक यू संदीप जी, आपने भी समझा और सपोर्ट भी किया, थैंक यू गॉड।
4: तो श्रोताओं, देखा आपने किस प्रकार शिक्षा समाज में हो रहे अपराध को रोकने में सहायक हुए। साथ ही एक और बात ध्यान देने की है, वो है ईश्वर पर विश्वास। जी हाँ, ईश्वर पर विश्वास, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। जिस प्रकार सुमन ने प्रार्थना की और ईश्वर पर विश्वास दिखाया, उसी प्रकार हमें भी जीवन के कठिन समय में उस पर विश्वास करना चाहिए और अच्छे समय में उसका शुक्रिया करना चाहिए। तो श्रोताओं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए। अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या हमें पत्र भी लिख सकते हैं। तो श्रोताओं, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और हमारा फोन नंबर है
5: 8527 44 99 8555। जी हाँ, 8527449955।
4: तो दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। आप क्या सोचते हैं, दहेज लेना और दहेज देना सही है या गलत? अवश्य इस बारे में सोचिए और हमें जवाब दीजिए। अब मैं इसी सवाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नई कहानी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।

आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर, प्रसार भारती की ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30:17 हुए हैं। अब हमारी तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा की शुरुआत कर रहे हैं युवाओं के दैनिक कार्यक्रम युवा संसार से।

0: आज का कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी की साथी याचना,
1: आपके साथी विशाल का भी नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में आज हम बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद जी की जयंती के बारे में। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ। वे एक महान नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सच्चे देशभक्त थे। उनकी जयंती हर वर्ष 13 मई को मनाई जाती है। इस दिन लोग उनके योगदान को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की तथा उन्हें आगे की पढ़ाई इंग्लैंड में की। वे शुरू में ही देश की सेवा करना चाहते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वे सन 1974 में भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उन्हें ईमानदारी से अपने दायित्व निभाए। आज भी लोग उन्हें एक महान नेता के रूप में याद करते हैं। हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और उन्नति में अपना योगदान देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा विशाल आपने। आज हम फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती मना रहे हैं। वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य वीरों ने अपना जीवन अर्पित किया और उन्हीं में से एक थे फखरुद्दीन अली अहमद, जो न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे और बल्कि आपने बताया कि वो भारत के 5वें राष्ट्रपति भी बने। उनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 13 मई को मनाई जाती है। यह दिन हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को समर्पित कर दिया। उनका जन्म 1905 को, जैसा कि आपने बताया, दिल्ली के होज काजी मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता कर्नल जलनूर अली अहमद असम के रहने वाले थे और ब्रिटिश भारतीय सेना में चिकित्सक थे, लेकिन वहीं पर उनकी बात करें तो इंग्लैंड से ही उनका परिचय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों से हुआ। वहाँ वे जवाहरलाल नेहरू से मिले, जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई। 1931 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। वे एक ऐसे भारतीय थे जो हिंदुस्तान की गंग जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतीक थे, और अगर हम देखें तो उनका जीवन आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश है कि राष्ट्र की सेवा सच्ची इबादत है।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं साथियों और आपको सुनवा देते हैं गीत। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से गीत है। गाय है सूरज जगन, जॉय बरवा और शंकर महादेवन ने। बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। संगीत दिया शंकर एहसान लोय।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से, ये गीत जिसको गाया था जॉय बरुआ ने और सूरज जगन के साथ साथ शंकर महादेवन ने, इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और इसको संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। और आज है बुधवार और बुधवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम करियर काउंसलिंग, जिसमें आज का विषय रहेगा टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर। और यह एक पुनः प्रसारित बातचीत है जिसमें विशेषज्ञ रहेंगे अजय कौशिक और इनसे बातचीत की है यज्ञदत्त मिश्र ने। आइए साथियों सुनते हैं ये बातचीत।
1: तो करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर और अपने देश में और बाहर जाकर भी किस तरह से हम टेक्सटाइल के क्षेत्र में अपने करियर को बना सकते हैं, रोज़गार अपना सकते हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो आप बताइए, सबसे पहले आपने क्या क्या शिक्षा वगैरह हासिल की?
2: धन्यवाद मिश्रा जी। मैं अजय कौशिक, तो मैंने अपनी बीटेक की है TIT भिवानी से 1998 में। उसके बाद मेरी पहली जो नौकरी

0: फैब्रिक को एक फिनिश प्रोडक्ट में, गारमेंट्स में कन्वर्ट करके वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो यूएस की कंपनीज हैं, वो बल्क में ये गारमेंट्स खरीदते हैं, जो फैशन हाउसेज हैं, बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर्स के जो हैं, तो ये सब अपना दिल्ली एनसीआर रीजन में एक्सपोर्ट हाउसेज उसको कन्वर्ट करके वो बाहर भेजते हैं।
1: इसके बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले गए?
0: हाँ जी, तो 2000 से लेके 2005 तक मैंने एक्सपोर्ट हाउस में काम किया। 2006 में अपॉर्चुनिटीज़ पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेक्सटाइल के सेक्टर में भी काफ़ी अवसर हैं। तो अब जैसे सबको पता है कि जो वूल है वो मेरिनो वूल, जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे फाइन क्वालिटी की वूल है, वो काफ़ी एक्सपोर्ट होती है। फिर आपकी कपास, जिसे हम कॉटन, वो भी ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी एक्सपोर्ट होती है। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ ए बिग एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल। उसमें आपकी कॉटन फाइबर्स हैं, उसमें आपके वूल हैं, और ऑस्ट्रेलिया इज़ आल्सो इम्पोर्टिंग ए लॉट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, कि वो इंडिया से, बांग्लादेश से, और आपके जो ये साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और आपका चाइना है, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्ट करता है टेक्सटाइल के फिनिश गुड्स। तो उसके अंदर आपके शर्ट्स, ट्राउज़र्स, टावल्स, जितने भी टेक्सटाइल के हैं, तो उसमें काफ़ी अवसर थे। तो जब मुझे ये अवसर मिला 2005 में, और 2006 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो मैंने वहाँ की एक कंपनी को ज्वाइन करा। और उस कंपनी का जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी थी वो थी वर्कवियर यूनिफॉर्म्स। वो वर्कवियर यूनिफॉर्म्स कहलाती हैं, जैसे आपकी जो आप काम पर यूनिफॉर्म डालते हो,
1: जो मतलब आप ऑफिस में जाते हैं और उस समय जो यूनिफॉर्म पहनते हैं।
0: हाँ जी, तो जितने बैंक्स हैं वहाँ पर, उन अच्छा। सब की एम्प्लॉयज़ की यूनिफॉर्म है। जितनी एयरलाइंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइंस है,
1: जितनी एयरलाइंस हैं उनकी भी अपनी यूनिफॉर्म है,
0: उनकी भी अपनी यूनिफॉर्म है। फिर आपकी पुलिस की यूनिफॉर्म हो गई
1: जी,
0: फिर आपकी एम्बुलेंस की यूनिफॉर्म, स्ट्रक्चर फायर फाइटिंग की, जो आप ये अग्नि शमक केंद्र के हैं,
1: केंद्र जी,
0: हाँ, तो उनकी यूनिफॉर्म्स हो गई। और फिर आपकी जो ये वर्कर्स हैं जो साइट पर काम करते हैं, तो उनकी सेफ्टी यूनिफॉर्म, जो तो वो एक कंपनी है जो इसके ऊपर काफ़ी एक्सपर्ट हैं।
1: अच्छा।
0: तो फैशन के अलावा वर्कवेयर की यूनिफॉर्म्स में भी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस और जो मैंने ज्वाइन करा जो फील्ड था वो वर्कवेयर यूनिफॉर्म्स के ऊपर था
1: जी। ठीक, तो अब ये बताइए कि चलिए आप तो वहाँ चले गए और आप सेटल हो गए, एक आम आदमी मान लीजिए जाना चाहता है ऑस्ट्रेलिया, तो ज़रूरी नहीं वो टेक्सटाइल के क्षेत्र में, बाकी किसी क्षेत्र में भी वहाँ रोज़गार अपना सकता है, तो क्या क्या क्षेत्र हैं जहाँ पर वो जाके अपना इस तरह का करियर बना सकता है, दूसरा किस तरह से जाया जाए?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि सबसे पहले कि हम वहाँ पर कैसे अवसर को प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर जाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
1: जी,
0: तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, तो उनकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो है हाउ गुड, मतलब कि आप कितने अच्छे हो इंग्लिश में। तो उसके लिए वो एक टेस्ट होता है, जिसको हम आइल्स भी होता है, एक टोफल भी होता है, और एक पीटीई भी होता है। तो उन तीनों में से आप कोई सा भी एक टेस्ट दे सकते हैं। हर अलग अलग फील्ड की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग के फील्ड के अंदर, क्योंकि आपने डेली जो नए बच्चे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आपको काफ़ी कन्वर्सेशन करना है, तो उसमें आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें जैसे आइट्स के अंदर एक बैंड होता है कि अगर आपका बैंड उसमें 8 है, लेकिन अगर आपका फील्ड शेफ़ का है, जिसमें कुकिंग के लिए, तो उसमें आपकी ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होती ऑडियंस के साथ, क्योंकि आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपको अपना किचन में या
1: काम करना है।
0: तो उसके अंदर आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम होती है। उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट 5 से 6 बैंड होती है स्टूडेंट्स के लिए
1: जी।
0: तो ये तो है इंग्लिश की रिक्वायरमेंट। फिर आ जाता है कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कैसे उस अवसर को देखें। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालती है हर साल, जिसमें वो स्किल शॉर्टेज, उनको किस किस स्किल के बंदे चाहिए,
1: अच्छा,
0: किस किस स्किल के उनको व्यक्ति चाहिए या स्टूडेंट्स चाहिए, या कौन सी स्किल की उनके पास शॉर्टेज है। तो वो लिस्ट वो हर साल अपडेट करते हैं। तो जैसे उनको इस साल उनको चाहिए शेफ, हेयर ड्रेसर, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट्स, तो उस फील्ड के बाद उस लिस्ट

0: में आप वो चेक कर सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिलती है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो वेबसाइट है वो आप चेक कर सकते हैं, www.imi.gov.au पर। तो उसमें आप अपनी स्किल्स की, इस स्किल्स की शॉर्टेज है वो, अगर वो आपने जो स्टडी की हुई है उस फील्ड में स्टडी की हुई है, जैसे नर्सिंग है, तो उसमें आप देखो कि उसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिर आप अपना इंग्लिश का टेस्ट देते हैं उसके अंदर, फिर आप अपना एक्सपीरियंस कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो वो उस वेबसाइट पर आपको सारा मिल जाएगा। अगर उसमें 60 पॉइंट्स आपके पूरे होते हैं तो उन 60 पॉइंट्स जो कि एक वीज़ा की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वहाँ परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, अगर आपको एज ए स्टूडेंट जाना है तो आप उस फील्ड में स्टूडेंट भी जा सकते हैं। तो स्टूडेंट के लिए फिर वहाँ पर आप स्टूडेंट के साथ आप काम भी कर सकते हैं, उसमें आपके रोज़गार के अवसर भी हैं अपने ही फील्ड में।
1: जी
0: तो उसके अंदर आप 20 घंटे पर वीक उसमें आप काम करते हैं, और अगर आपके पॉइंट्स पूरे होते हैं तो आप उसमें परमानेंट रेजिडेंस के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं।
1: जी अच्छा, पेमेंट वगैरह का क्या मोड होता है वहाँ, किस तरह से और किस हिसाब से मिलती है?
0: तो अलग मोस्टली वहाँ पर जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो आय है प्रति व्यक्ति आय, या आय जो उन्होंने सीमित कर रखी है, उसमें पुअर और रिच में गैप काफ़ी कम है। तो हर फील्ड की ऑलमोस्ट सिमिलर आय है, तो चाहे वो आप शेफ हो या फिर आप बैंक में एक मैनेजर हो। तो जनरली जो मिनिमम वेज पेमेंट ऑस्ट्रेलिया की है उस फील्ड के अंदर, औसतन हर बंदे की आपकी 25 से $75 पर आवर आपको मिलते हैं। तो मिनिमम 25 से आपको $75 पर आवर के आपको मिल जाते हैं। तो और फुल टाइम जो काम करते हैं उसमें पर वीक आपका होता है कि 37 आवर्स आपने काम करना है, जो एक 7.5 मतलब 7.5 घंटे पर दिन के काउंट होते हैं। जैसे हम इंडिया में आपकी ऑफिस ड्यूटी होती है 9 से 5, जो एक
1: जी
0: 8 घंटे की है और आधा घंटा आपका लंच का। तो
1: जी
0: सेम ऑस्ट्रेलिया में है कि 8 घंटे की एक ड्यूटी होती है जिसमें आधा घंटा आपका लंच का होता है ब्रेक, और 7.5 घंटे, और पर आवर के हिसाब से आपको उसमें सैलरी मिल जाती है।
1: जी तो आपने कहा कि 70-75 डॉलर वहाँ की जो है, तो इंडिया के हिसाब से यानी भारत के हिसाब से कितना पड़ता है?
0: अब 70-75 जो मैंने बताया वो है आपकी जैसे थोड़ी हाई रैंक ऑफिसर्स की, जो बेसिक है वो आपकी 30, 40, 50 तक, जो एक नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की जो स्टार्टिंग में आप अपना स्टार्ट करते हो। तो अब अभी जैसे $1 आपका अराउंड 47 रुपीज़ के बराबर है। तो अगर हम बेसिक भी मानते हैं $30, तो वो आपका अराउंड आ जाता है 140 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से।
1: जी अच्छा, तो अब ये बताइए कि क्या क्या क्षेत्र ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको हिंदुस्तान का वो पता है, यहाँ किस किस तरह के जो हैं वो शिक्षाएं हैं, किस किस तरह के लोग तैयार होते हैं डिफरेंट करियर्स में, और वहाँ की रिक्वायरमेंट पता है कि क्या क्या क्षेत्र हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है।
0: तो आज रिक्वायरमेंट हर कुछ सालों में बदलती रहती हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एक स्किल शॉर्टेज की लिस्ट निकालती है।
1: अच्छा, मेनली वो क्या होते हैं स्किल शॉर्टेज में?
0: तो स्किल शॉर्टेज में जैसे आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे आईटी है। तो आईटी में हर कंपनी चाहती है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े, तो आईटी की काफ़ी जॉब्स हैं। और आईटी जो इंडियंस हैं, मोस्टली आईटी कंपनीज के अंदर इंडियंस रन कर रहे हैं, तो मतलब कि इंडियंस के वो अच्छा भी मानते हैं कि आईटी के फील्ड में दे आर ब्रेन, दे आर एक्सपर्ट एंड दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस।
1: तो आईटी में क्या मांगते हैं, क्वालिफिकेशन, बीटेक वगैरह मांगते हैं वो?
0: आईटी में मेनली एजुकेशन से ज़्यादा उनका जो जिसको वो प्रेफर करते हैं वो एक्सपीरियंस होता है,
1: अच्छा।
0: तो आपका किस फील्ड में है। और दूसरा जो वहाँ पे अवसर हैं आईटी के अलावा आपके मेडिकल लाइंस में, जैसे नर्सिंग हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके अलावा आपके पास अवसर हैं शेफ़ के,
1: अच्छा।
0: तो जो शेफ़ हैं, फिर फार्मिंग के कुछ अपने इंडियंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके फार्मिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिक शॉर्टेज है वो लेबर की है, लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव।
1: अच्छा।
0: तो उसके अंदर आपको वो फार्मिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, शेफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास आईटी के अंदर हैं, आपके पास नर्सिंग के अंदर हैं, मेडिकल्स के अंदर हैं, हेयर ड्रेसिंग के अंदर हैं, फिर बायो मेडिकल फील्ड के अंदर हैं, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं।
1: हिंदी वगैरह के क्षेत्र में भी हैं क्या? हिंदी वहाँ बोली जाती है कुछ या पढ़ाई जाती है?
0: तो हिंदी, ऑस्ट्रेलिया को जो देश है वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, उसके अंदर पिछले 10 साल में काफ़ी इंडियंस की आबादी बढ़ी है, तो अब
1: जी
0: देर इज काफ़ी ज़्यादा इंडियंस है, तो अब हिंदी का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है क्योंकि काफ़ी लोग अपना इंडियन ओरिजिन के हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ स्कूल स्टार्ट करे हैं जिसको वो VCE बोलते हैं, जिसके अंदर वो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं जो आपकी कल्चरल बैकग्राउंड है। तो जैसे मैं वहाँ पर रहता हूँ, मेरी 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी है, अब मैं वो स्कूल आपके सैटरडे और संडे को लगते हैं, तो अपने कल्चर से अटैच करने के लिए हम इंडियंस अपने बच्चों को हिंदी सीखने के लिए भी भेजते हैं, तो वो गवर्नमेंट के रन प्रोग्राम है, वो प्राइवेट नहीं है, तो बच्चे वहाँ पर जाते हैं, बाकियों से मिलते हैं और जो जिसकी जो बैकग्राउंड है वो वहाँ की भाषा भी सीखते हैं। तो इंडियंस काफ़ी हैं, आपके चाइनीज़ भी हैं, फिर यूरोपियंस काफ़ी हैं और थोड़े बहुत है आपके अफ्रीकन्स हैं, तो वो एक मल्टी कल्चर सोसाइटी है।
1: मुख्य खाना वहाँ का क्या है और क्या भारतीयों को जो भारतीय खाना है वो मिल जाता है वहाँ पे?
0: तो मुख्य खाना ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी मिक्स है क्योंकि वो एक मल्टी कल्चर सोसाइटी है उसमें, लेकिन अब इंडियंस की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, खासकर आपकी मेलबर्न, सिडनी और एडिलेड शहरों में, तो वहाँ पर इंडियन खाना, इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। आपने घर पर खाना बनाना है तो काफ़ी इंडियन ग्रोसरी शॉप हैं जो आपके हर सबब में, जैसे यहाँ पर हम कॉलोनीज होती हैं या सेक्टर होते हैं, तो वहाँ पर हम उस सेक्टर को सबब्स बोलते हैं, तो हर सबब्स में आपको एक इंडियन ग्रोसरी की शॉप मिल जाती है। उस इंडियन ग्रोसरी शॉप पर आपको हर तरह का खाना, मसाले या काफ़ी इंडिया से वो सब इम्पोर्ट होके आता है, आपके ये हल्दीराम्स और
1: तो
0: आपके
1: इंडिया का
0: जितने
1: खाना सस्ता पड़ता है या वहाँ का खाना सस्ता पड़ता है?
0: खाने के हिसाब से वहाँ का खाना अगर आप देखा जाए तो वो दे आर लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियंस, कि
1: जी
0: वो काफ़ी मीट वगैरह जो ऑस्ट्रेलियन खाते हैं, हम इंडियंस जनरली काफ़ी वेजिटेरियंस, जो हम सब्जियां वगैरह, तो वहाँ पे सब्जी मार्केट भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं,
1: सब्जी सारी इंपोर्ट होती है या वहाँ भी कुछ उसकी पैदावार है?
0: उसमें वहाँ की भी पैदावार है जो लोकल प्रोड्यूस हैं, जैसे आपके आलू, प्याज और जो हरी सब्जियां हैं या बैंगन हैं, और कुछ सब्जियां वो इंपोर्ट भी करते हैं जो आपकी मेनली थाईलैंड, इंडोनेशिया इधर से आती हैं, और जो पैकेज फूड हैं जो अपनी इंडियन ग्रोसरी शॉप से मिल जाते हैं वो सारे आपको इंडियन से इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं और आपके यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं।
1: चलिए, हमारे युवा श्रोता जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर को बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे तैयार करें अपने आप को और किससे संपर्क करें? मान लीजिए उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो एक तो आपने कहा कि ये टेस्ट हैं, ये टेस्ट दे सकते हैं, ये अलावा इसके भी वो अगर जाना चाहें तो किससे, मतलब किस तरह का जरिया वो अपना सकते हैं?
0: तो उनके लिए जो मेरी राय है, जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है, जो
1: तरीका
0: उनको अच्छी एक नॉलेज भी देगा कि कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले वो अपने आप को उनकी वेबसाइट पर जाओ, कभी एजेंट से आपने देखा होगा कि इंडिया में भी काफ़ी एजेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम
1: जी
0: ऑस्ट्रेलिया,
1: जी
0: US और कनाडा भेजते हैं, तो उन एजेंट पे जाने से पहले आज की डेट में सब कुछ जो है वो आज की डेट में ऑनलाइन
1: ओपन है।
0: अवेलेबल है और काफ़ी ओपन है, और गवर्नमेंट पूरे प्रयास करती है हर देश की, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, कि उसको सरल से सरल, कि इजी से इजी इंफॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं। तो मेरा उनको सुझाव यही है कि सबसे पहले वो वेबसाइट पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन लें, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन और ज़रूरत है आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है आप वहाँ जाकर, वहाँ पे एक स्पेशल उन्होंने शिक्षा के लिए खोला हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी प्रमोट करता है एजुकेशन को, क्योंकि वो उसकी एक इकोनॉमी का मेन हिस्सा है, कि जहाँ से उनको फॉरेन इनकम भी काफ़ी जनरेट होती है, तो दे मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा उनको प्रेफरेंस देता है कि आप यहाँ पर आकर हमारी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन को लें, तो उसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी जा सकते हैं, वहाँ पे उनके शिक्षा केंद्र है, वहाँ पे वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन, अगर किसी कॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको उसकी क्वालिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या प्रोसेसिंग है, कितनी फीस है, कितना टाइम समय अवधि है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन और उनकी एम्बेसी से प्राप्त हो सकती है।
1: जी, तो अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने सब जानकारी मुहैया कराई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये पुनः प्रसारित बातचीत जो थी विशेषज्ञ अजय कौशिक और यज्ञदत्त मिश्र के बीच में।
3: साथियों, कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे महान लेखक आर के नारायण पुण्यतिथि के बारे में। आर के नारायण प्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को चेन्नई में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा के महान साहित्यकारों में गिने जाते थे। उनकी पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद करते हैं और उनके साहित्य योगदान को सम्मान देते हैं। आर के नारायण ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय जीवन को बहुत ही सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में आम लोगों का जीवन, उनकी समस्याएं और भावनाएं दिखाई देती हैं। उनकी लेखन शैली सरल, मनोरंजन और प्रभावशाली थी। इसी कारण उनके लेख आज भी लोगों द्वारा बड़े ही उत्सव से पढ़े जाते हैं। उनके जीवन में हमें मेहनत, सहनशीलता और ज्ञान का महत्व सिखाया जाता है।
2: और विशाल, अगर हम देखें तो भारतीय अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में यदि किसी एक लेखक का नाम सबसे पहले और सबसे आदर से लिया जाता है तो वह है रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें दुनिया आर के नारायण के नाम से जानती है। यह दिन न केवल एक महान लेखक को याद करने का अवसर है, बल्कि भारतीय जीवन की उस सरलता, सहजता और मानवीयता को भी नमन करने का दिन है जिसे नारायण जी ने अपनी कलम से अमर कर दिया। उनकी सबसे बड़ी देन मालगुड़ी डेज, यह एक काल्पनिक कस्बा है जो दक्षिण भारत की किसी वास्तविक बस्ती जैसा लगता है। इसके जरिए साधारण भारतीय जीवन को विश्व साहित्य मंच पर प्रस्तुत किया गया। वो एक अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। प्रसिद्धि और पुरस्कारों के बावजूद वे मैसूर की शांत जीवन शैली से कभी नहीं भटके। वे मानते थे कि लेखक का काम उपदेश देना नहीं, जीवन को जैसा है वैसा दिखाना है। और हमें उनकी पुण्यतिथि पर हम उस महान साहित्यकार को नमन करते हैं जिसने साधारण में असाधारण खोजा। और जैसा कि अगर हम देखें तो विशाल, आज हमने हमारा जो कार्यक्रम था वो आज करियर काउंसलिंग का था, जो हमारा जो ये एक पड़ाव होता है करियर चुनने का, वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है।
3: जी बिल्कुल।
2: अगर देखें तो देखें, हमारा ये सबसे बड़ा निर्णय भी है और यह निर्णय आपकी खुशी, आपकी आजीविका और आपके भविष्य को तय करता है। इसलिए इसे सोच समझ कर और धैर्य के साथ लेना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पहचाने कि आपकी जो रुचि है या फिर आपकी कोई प्रतिभा है, और आपकी कमजोरियों को समझें कि आप किस चीज़ में कमज़ोर हैं। इन पर काम करें और जिस काम में आपको आनंद आए वही काम करना और उसी सही दिशा में जाना आपको बिल्कुल आवश्यक होता है। दूसरों की देखा देखी या फिर परिवार के दबाव में आकर करियर चुनना आगे चलकर पछतावे का कारण बनता है। और विशाल, देखें तो आज के समय में केवल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सरकारी नौकरी की ही सफलता का रास्ता नहीं है। खेल, कला, मीडिया, तकनीक, कृषि, व्यापार, हर क्षेत्र में अवसर हैं। ज़रूरत है तो बस अपनी रुचि और बाज़ार की मांग का सही मेल बिठाने की। इसलिए करियर चुनने से पहले उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी लें, सफल लोगों से मार्गदर्शन लें। और आजकल खासकर जो है, हमें उस, अगर हम उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक चीज़ होती है हमारे लिए कि हम उसके बारे में काम कर कर देखें तो हम उसके लिए इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, अपना अनुभव हासिल कर सकते हैं उन इंटर्नशिप्स में। तो ये हो जाता है कि हम पहले उसको जानते हैं, फिर हमारे उस करियर को चुनते हैं, और यही सबसे समझदारी की बात है। और अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि सही करियर वह है जिसमें रुचि, योग्यता और अवसर तीनों का मेल है। स्वयं पर विश्वास रखें, मेहनत करें और धैर्य न खोएं। सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और साथियों, अब हो चुका है समय हमारा जाने का। आपसे फिर मिलेंगे किसी और दिन, इसी समय किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा संसार कार्यक्रम। आकाशवाणी का यह रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी समाचार, जिन्हें हम अपने केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। रात 9:30 बजे आप सुनेंगे चर्चा का विषय है कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:20 पर कृषि जगत में भेंट वार्ता एक किसान से में आप सुनेंगे आमंत्रित किसान जयकरण से पुनः प्रसारित भेंट वार्ता। ग्रामीण संसार में शाम 7 बजे सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8:25 पर। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 7:30 बजे। एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर और मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात 10 बजे। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब कल के मुख्य आकर्षण। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कंट्री वाइड और रात 9:45 पर इनसाइट्स। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा दोपहर 12:30 पर। सुबह 7:15 पर विविधा कार्यक्रम में श्री संदीप पाठक की हिंदी वार्ता का विषय रहेगा ज्येष्ठ माह का महत्व। सुबह 7:25 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुनेंगे शाम 5:30 बजे। सुबह 6:50 पर कृषि की बातें कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा मुर्गी घरों की देखभाल। खेत खलिहान में दोपहर 2:30 बजे चर्चा की जाएगी अरहर की काश्त बारे। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार से पुनः प्रसारित बातचीत का विषय रहेगा कृषि जल की बचत कैसे करें। ग्रामीण संसार में शाम 7 बजे श्री बचन राम अरोड़ा से पुनः प्रसारित बातचीत का विषय रहेगा छुट्टियों का सही उपयोग। सुबह 8:30 बजे लोक संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे दीपचंद। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुनेंगे सुबह 6:05 पर। श्री रामचरितमानस गान सुबह 6:40 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:25। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक में सुबह 9:00 बजे। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर। शाम 7:30 बजे एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर और मन चाहे गीत कार्यक्रम में रात 10 बजे। ये थी जानकारी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब कुछ सूचना गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। ये पहली सूचना है थाना खराबड़ चौकी खराबड़ रोहतक से प्राप्त। प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा महिला का नाम है कविता, उम्र 22 साल। ये 9 मई 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस तरह है, रंगोरा गोल चेहरा हष्टपुष्ट शरीर, कद 5 फुट 2 इंच। इन्होंने लाल रंग का सूट और सलवार और कोका कोला रंग का दुपट्टा पहना है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिले तो संपर्क करें प्रबंधक अफसर IMT रोहतक। दूरभाष नंबर है 7082999124। अगली सूचना है थाना शहर रोहतक से प्राप्त। प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति का नाम है राहुल। ये 9 मई 2026 से डेरी मोहल्ला रोहतक से लापता है। इनका हुलिया इस तरह है, उम्र 28 साल, रंग सांवला लंबा चेहरा, कद 5 फुट 8 इंच। इन्होंने सफ़ेद रंग की कमीज और खाकी कलर की लोवर पहनी है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिले तो संपर्क करें प्रबंधक अफसर थाना शहर रोहतक। दूरभाष नंबर है 7082999115। अगली सूचना है थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक से प्राप्त। प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा महिला का नाम है तनु। ये 11 मई 2026 से न्यू विजयनगर रोहतक से लापता है। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना, इनका हुलिया इस तरह है, उम्र 25 साल, कद 5 फुट 3 इंच। इन्होंने जामनी रंग का सूट और सलवार पहने हैं और पैरों में स्लीपर पहने हैं। इनके बारे में अगर कोई भी सूचना मिले तो संपर्क करें प्रबंधक अफसर थाना रोहतक। दूरभाष नंबर है 7082999119। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार जीते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव की जीत को भाजपा में जनता का विश्वास और जन केंद्रित नीतियों की जीत बताया। हिसार जिले के उकलाना जिले पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी विजय रही। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। पंचकुला क्षेत्र का परिणाम 85.73% रहा। और अंबाला पुलिस ने शाहबाद लाडवा रोड से एक मोटर यार्ड में खड़ी गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निकाय चुनाव के परिणाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आम जनता के विश्वास और जन केंद्रित नीतियों की जीत बताया है। मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि लोगों का केंद्र और राज्य सरकार में विश्वास बढ़ा है। आज निकाय चुनाव का परिणाम उसी विश्वास का प्रतीक है।
1: आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव। एक तरफा लोगों ने वोट कमल के फूल को दिया। 3 के 3 मेयर, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है उनका चेहरे से नकाब।
0: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष झूठ की राजनीति करता है, इसलिए अब जनता को उन पर विश्वास नहीं रहा। भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने लोगों का भाजपा को नगर निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए आभार जताया।
2: हरियाणा के नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जानदार और शानदार जीत की हरियाणा की प्रजा को, हरियाणा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन। यह जीत केवल सामान्य नहीं है बल्कि अजय और अभेद्य हरियाणा के अभियान के सोपान की जीत है। मैं मानता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री यशस्वी नायब सैनी जी के नॉन स्टॉप हरियाणा के प्रतिबद्धता की जीत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है शहरों के विकास के लिए।
0: अंबाला नगर निगम के लिए महापौर पद की प्रत्याशी का चुनाव अक्षता सैनी ने कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर को 21,358 वोट से हराकर जीत लिया है। अक्षता सैनी को 52,794 वोट मिले जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलविंदर कौर को 31,436 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार सोनिया चौधरी को 21,730 वोट प्राप्त हुए और 1,691 लोगों ने नोटा को वोट दिया, अर्थात किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया। वहीं 20 वार्ड के सदस्य के चुनाव में 16 में भाजपा ने, 3 पर कांग्रेस और 1 वार्ड से आजाद उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अपनी जीत पर अक्षता सैनी ने अंबाला शहर की जनता का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये मेरी जीत नहीं बल्कि पूरे अंबाला के लोगों की जीत है। पंचकुला नगर निगम चुनाव में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल 36,252 मतों के अंतर से विजयी रहे। उन्हें कुल 78,544 वोट मिले जबकि कांग्रेस की सुधा भारद्वाज को 32,292 वोट प्राप्त हुए। पंचकुला नगर निगम के कुल 20 वार्डों में 17 में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की जबकि 2 वार्ड में निर्दलीय और 1 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की। सांपला नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवीण कोच ने 686 वोट से जीत हासिल की। प्रवीण कोच को 4,391 वोट जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अंकित को 3,704 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा 6,200 वोटों से जीत गए। भाजपा के अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले जबकि बाबूलाल लांबा 3,156 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत नगर निगम में महापौर पद के उम्मीदवार राजीव जैन भी चुनाव जीत गए हैं। राजीव जैन ने कांग्रेस के कमल दीवान को 23,247 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की। वहीं सोनीपत के 22 वार्डों में से 16 वार्ड में भाजपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, जबकि 4 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और पूर्व मंत्री कविता जैन ने भाजपा की जीत का श्रेय भाजपा सरकार की नीतियों को दिया। श्री मोहन लाल बड़ौली ने कहा,
3: हरियाणा की जनता जनार्दन ने जो उस निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाने का काम किया है, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास की जीत है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। मैं हरियाणा की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।
0: हिसार जिले की उकलाना नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने जीत दर्ज की है। रीमा सोनी ने निकिता गोयल को 2,806 वोटों के अंतर से हराया। रीमा सोनी को 7,078 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी निकिता गोयल को 4,272 वोट हासिल हुए। जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रीमा सोनी ने कहा कि ये जनता की जीत है,
4: ये मेरे अकेले का जीत नहीं है, ये मुझे जिन्होंने आशीर्वाद दिए सबके सहयोग और सबके साथ की जीत है जी। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी उकलाना की जनता का, पुलिस प्रशासन का और सभी पार्टियों का मैं दिल से धन्यवाद
0: कर। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड और एक तरफा जीत के बाद रोहतक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शमशेर सिंह खरक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी नीतियों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली के संगठनात्मक मार्गदर्शन में भाजपा ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगमों के महापौर पद सहित कई वार्डों में भाजपा की शानदार जीत तथा रेवाड़ी, सांपला सहित अन्य क्षेत्रों में मिली सफलता ये साबित करती है कि हरियाणा की जनता अब परिवारवाद, झूठे वादों और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार चुकी है। जनता विकास, पारदर्शिता और सुशासन की राजनीति के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डीजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है, जबकि छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आज घोषित 12वीं कक्षा के नतीजे में देश के 22 क्षेत्रों में पंचकुला क्षेत्र 12वें नंबर पर रहा। इस क्षेत्रीय अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पंचकुला क्षेत्र में इस बार परिणाम 85.73% रहा। उन्होंने बताया कि पंचकुला क्षेत्र में इस बार 75,248 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे। पंचकुला क्षेत्र में हरियाणा के 11 जिलों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। अंबाला पुलिस के विशेष कार्य बल ने शाहबाद लाडवा रोड स्थित चीनी मिल के सामने महादेव मोटर यार्ड में खड़ी एक गाड़ी से हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। इस मोटर यार्ड का मालिक गांव तंगोर निवासी सूर्य प्रताप पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। एसटीएफ के एक अधिकारी दिलजीत सिंह ने बताया कि आरोपी सूर्य प्रताप को पहले गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक पिस्तौल और 2 जिंदा बारूद बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत मिली। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत तीनों नगर निगमों में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवार जीते। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाइयों ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों देखो, जेठ का महीना है, लगभग एक दो दिन बाद दही चलिया जाएगा और जेठ का महीने में गर्मी होना तो एक स्वाभाविक बात है। और उसमें जहाँ तक हम बात करें भाई, जो गर्मी का मौसम हो गया है, जेठ का महीना है, इसमें लू चल रहे हैं और जो लू हैं उनका होना भी हमारे जो मौसम के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ज़मीन में एक ताकत बना है। क्योंकि इस समय एक विशेष फारिश जो हमारे किसान भाई हैं उन तो ये करीजा है कि भाई वो अपनी ज़मीन की गहरी जुताई करें, क्योंकि गहरी जुताई करने से जो हमारे खेत की ज़मीन है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़े है, उसकी जो उर्वरा ताकत है वो बढ़े है और उसकी एक भुरभुरेपन, जिसको हम कहूँ भाई, जिसके लिए हम बार बार जुताई कर रहे हैं, तो यदि हम इस समय पर गहरी जुताई करते हैं तो फिर वो हमारी ज़मीन पूरे के पूरे साल तक भुरभुरापन रखेगी और उसमें जो पानी के पीने की या जल को धारण करने की जो अक्षमता है वो बनी रहेगी। और इसका एक और भी फायदा है, और वो फायदा है कि इसमें जो नीचे वाली करड़ी ज़मीन है, सख्त ज़मीन है, उसको यदि हम पलट कर ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली जो ज़मीन है यदि वो नीचे चली गई, वो तो पहले ही बिल्कुल ये कही जाएगी कि भाई अच्छी ज़मीन है और वो नीचे चली जाएगी, और ऊपर वाली जो ज़मीन है जब वो सूर्य के प्रकाश में, यानी कि जो सूरज की धूप है उसके संपर्क में आओगी, तो वो बिल्कुल बोधी हो जाएगी और उससे जो ज़मीन के हमारे पोषक तत्व हैं यानी कि लंबी सतह तक बने रहेंगे। और कई बार हम अपनी जो ज़मीन की ताकत को बढ़ाने के लिए हरे खाद का प्रयोग भी करें हैं, उसमें जो हमारे किसान भाई हैं जैसे ढेंचा भी लगा हुए हैं, मूंग है, शनी है, कुछ भाई जो दूसरी कचरी कचरियाई बेल हैं वो भी बोदे हैं, तो उससे क्या है कि जितना ज़मीन के अंदर जो हरा पत्ता है वो रवा होगा उतनी हमारी जो ज़मीन है वो अच्छी बढ़िया ताकतवर बनेगी। और उसके अंदर, क्योंकि देखो भाइयों, हमारे पास पशुधन बहुत कम होता जा रहा है, हम ज़्यादातर खेत ऐसे हैं जिनके अंदर जो कुरड़ी की खाद है वो नहीं डाल पाते। जहाँ पे हम नहीं डाल पाते, ये एक मजबूरी कह लो, तो उस जगह पे हम हरी खाद का प्रयोग करें। बाकी देखो, जहाँ संभव हो उसके वहाँ अपनी हम कुरड़ी की गली सड़ी हुई खाद डालें, क्योंकि यदि हम कच्ची खाद कई बार डालते हैं, अगर वह कच्चा खाद है डाल दो और बाद में पानी आओगा, तो वो फिर अच्छा उसका जो रिजल्ट है वो नहीं रहता। अच्छी गली सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, गड्ढे की खाद होनी चाहिए जो काली हो जाए बिल्कुल, तो उस खाद को हमने अपने खेत के अंदर डालना है। बाकी हमने एक ज़मीन के जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाए रखने के लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है कि जो हमारे कृषि के उत्पाद हैं, जैसे मान लो हमारी फसल हैं, उनके जो अवशेष हैं, जैसे गेहूं की हम बात करें और आगे जाके जो हमारी धान की फसल है उसके अवशेष हैं पराली के रूप में, उनको हमने जलाना नहीं चाहिए। यदि हम उनको जलावे हैं, जिस जगह पर वो जड़े हैं उस ज़मीन के पोषक तत्व ख़त्म हो गया हैं और उससे जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, घटते नहीं, इसलिए हमने जो अवशेष हैं उनको बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। इससे हमारी ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो गया है और हमारी ज़मीन कमज़ोर पड़ गया है। और यदि हम इन अवशेषों को ज़मीन के अंदर मिला देंगे, मान लो हम जुताई कर दी, ज़्यादातर जो हमारा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का, उसमें लगभग बरसात हुई है और बरसात ऐसी हुई है कि भाई ज़मीन हमारी अच्छी अच्छे तरीके से जुताई होगी और उसको यदि हम जुताई कर देंगे तो वो ज़मीन के अंदर मिल जाएगी। ऊपर हम चाहे कोई भी फसल बोएं, चाहे हम चारे वाली फसल बोएं, चाहे हम धान की फसल लगाएं या कोई दूसरी फसल है जिसमें, जैसे अरहर की हम बात करें या ग्वार की बात करें, कपास की बात करें, वो सारे के सारे जो अवशेष हैं वो ज़मीन के अंदर मिल जाएंगे, जिससे हमारी ज़मीन की जो ताकत है वो बढ़ेगी। बाकी हमने देखो इस बात का भाइयों पूरा ध्यान रखना है कि भी हम अपने खेत के अंदर जो कृषि के अवशेष हैं, जो फान्य हैं, उनको नहीं जलावें। इसका एक नुकसान ये भी है, जो छोटे फल वृक्ष हैं वो भी ख़त्म हो गए हैं, और बड़े जो वृक्ष हैं एक साल भर में जो मान लो चालू हुए हैं, वो छः महीने में फिर उनका जलन का नंबर आ गया है, तो वो फिर हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है। इसलिए हमने कृषि के जो अवशेष हैं उनको बिल्कुल भी नहीं जलाना है। और देखो, हमारे जो किसान भाई हैं काफ़ी समझदार हैं, प्रगतिशील हमारे किसान भाई हैं, उनसे हम समय समय के हिसाब से जो बातचीत है वो भी करवाते रहे हैं। तो आज एक हमारे किसान भाई हैं जयकर्ण जी, तो ये पूर्व प्रसारित बातचीत है, एक बार वो पहले आए थे, तो उनसे ये भेंटवार्ता एक किसान से सुनवाते हैं। तो भाई सुने जयकर्ण जी से ये बातचीत।
2: भेंटवार्ता एक किसान से। भाइयों, इस क्रम में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं जयकर्ण जी को। जयकर्ण जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय हम जानना चाहेंगे कि आप खेती बाड़ी के काम में कब से लगे हुए हो।
3: सभी भाइयों को नमस्कार, और आप सबका भी धन्यवाद कि मुझे आज आपने यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे मौका दिया अपने किसान भाइयों से बातचीत करने का, अपना जो सोच है उसको प्रसारित करने का।
2: जी।
3: तो सर, मैं खेती का जो काम कर रहा हूँ, लगभग 1997-98 से मैं सक्रिय खेती का काम करना शुरू किया था।
2: अच्छा।
3: उससे लेकर के आज तक मैं खेती के काम में लगा हुआ हूँ।
2: पढ़ाई आपने कहाँ तक की है?
3: BA मैंने पढ़ा था।
2: अच्छा
3: जी।
2: तो फिर खेती की तरफ रुझान किस तरह होया, क्योंकि BA करने के बाद तो यूँ हो गई कि नौकरी मिल जाए।
3: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पैतृक काम है वो खेती का काम रहा।
2: जी।
3: और पैतृक काम के साथ साथ में जो आज हम खेती कर रहे हैं वो एक अलग प्रकार की खेती है। उस समय भी खेती होती थी। नौकरी के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हो पाया कि मैं सक्सेस हो जाऊँ या मुझे कोई नौकरी मिल जाए।
2: तो
3: दोनों कारण रहे हैं।
2: जी। तो आपने जब खेती का काम शुरू कराया, उस समय खेती की क्या हालत थी? मतलब इस तरह था कभी घर परिवार का काम चल जाया करता?
3: हाँ, उस समय खेती में खर्च कम था।
2: जी।
3: आज की अपेक्षा।
2: जी।
3: ज्यादातर जो काम होते थे वो हमारे बगैर पैसों के होते थे। आज जो खेती है वो ज्यादा खर्चीली है, बहुत ज्यादा खर्च आज। उस समय हम मान के चले कि 50-50, 50-50 इनकम होती थी। आज खर्च 80% है, इनकम 20% है।
2: अच्छा।
3: आज खर्च बहुत ज़्यादा हो गया।
2: जबकि देखा जाए तो अब बढ़िया किस्में आ गई हैं।
3: उत्पादन बढ़िया है, उत्पादन बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाव भी बढ़ रहे हैं। लेकिन किसान भाई अंधाधुंध जो खर्चा कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी समस्या है। आज मैनुअली कोई काम नहीं हो रहा है। किसान कोई भी है वो हाथ से काम नहीं कर रहा है, मशीनरी से काम कर रहा है, दवाइयों से काम कर रहा है, तो ये सारा पैसा खर्च हो रहा है। किसान की जेब में क्या आता है, ये एक मेन बात है। किसान की जेब में आज कुछ नहीं आ रहा है। उस समय जब हमने 98 में खेती शुरू करी, उससे पहले तो बिल्कुल खेती जो है वो बगैर खर्च की थी। उस समय तक भी कुछ ऐसी संभावनाएं थी कि थोड़ा बहुत खेती का खर्च हो जाए, कुछ हमारी मेहनत हो जाए, दोनों मिलकर के हम खेती को कर लेते थे और हमें उसका लाभ मिलता था।
2: जी।
3: दो पैसे हमारी जेब में आते थे। लेकिन आज तो हम केवल एक बीच में खड़े हैं, एक कड़ी की तरह, कि हमने मंडी में अपनी फसल बेची है, वहां से पैसे उठाए और जहां से हमने सामान खरीदा, खाद, बीज, दवाइयां, उनको दे दिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा।
2: तो ये बदलाव किस तरह आया? परिवार की जरूरत बढ़ गई या खेती में लागत बढ़ गई या कोई पुराना सिस्टम होने के कारण किसान भाई उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए?
3: इसमें सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूं वो है कंपटीशन,
2: प्रतियोगिता।
3: प्रतियोगिता किसानों के बीच में एक प्रतियोगिता है।
2: अच्छा।
3: ज्यादा उत्पादन लेने की होड़ लगी। इसके चलते किसान भाई आज आंख बंद करके अपने खेतों में अनावश्यक दवाइयों का, अनावश्यक केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं।
2: तो ये होड़ किस वजह से लगी? क्या क्या परिवर्तन हुआ है ऐसा?
3: परिवर्तन ये हुआ कि ये किसान भाई के खेत में 50 मन क्यों है, 1 कम 70 मन क्यों है।
2: जी।
3: अब 50 मन वाला भी चाहेगा कि मेरे को 70 मन होने चाहिए। उसको ये पता नहीं है कि 70 मन तक जाने के लिए आपको 30 मन गेहूं का खर्च इस पर करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। जमीन की सेहत के साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज जो हमारा जीवन शैली है उसके साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं।
2: बल्कि जीवन शैली हमारी बदल गई है और उसमें जो खान पान का जो हमारा एक सिस्टम होता था, रहन सहन का, पहनावे का, सारे में तो बदलाव आ गया।
3: बिल्कुल बदलाव आया सर।
2: तो क्या उस वजह से ये एकदम से होड़ लग गई है?
3: नहीं, बदलाव तो देखो नेचुरल है, प्रकृति है और प्रकृति का नियम है बदलाव आना, लेकिन कृषि में इतना बदलाव आना ये ठीक नहीं है। आज जो हाई लेवल की मशीनरी किसानों को मिली वो खर्च बढ़ा है। आज किसान ने मेहनत करना छोड़ दिया, वो सारा का सारा खर्च जो करता है वो अपनी खेती को चलाने के लिए करता है।
2: लेकिन जयकरण भाई एक बात और देखो आप, कि पहले परिवार संयुक्त तो होया करते थे,
3: हाँ
2: है ना
3: जी,
2: तो खेती का काम करने में एक दूसरे का सहयोग कराया करते थे। लेकिन जब परिवार छोटे हो गए तो मशीनरी पर अपने आप निर्भर होना पड़ेगा।
3: आपकी बात ठीक है, लेकिन सर एक बात बताइए, जब परिवार छोटे हो गए तो खेती की जोत भी तो कम हुई। अब पहले 20-20 किले थे, आज 2.5 एकड़ का 1.5 एकड़ का जमींदार रह गया और वो इतने छोटे से खेत को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंसान को इतना छोटा काम मुश्किल हो, लेकिन जब हमारे पास में सुविधाएं हैं तो वो किसान भाई सुविधाओं का लाभ ज्यादा ले रहे हैं। उनको इस बात से मतलब नहीं है कि उनको लाभ किसका मिल रहा है, लाभ की जरूरत नहीं है। खेत में अच्छी फसल हो रही है, अच्छा उत्पादन हो रहा है, भाव भी बढ़िया है, लेकिन किसान भाई कर्ज के नीचे दबता जा रहा है। आज किसान, पहले के लोग थे हमारे दादा थे, वो बड़े बड़े घर बनाते थे, नौरे जो दरवाजे होते थे
2: जी।
3: इतना बड़ा दरवाजा होता था कि उसमें 5 परिवार भी रह सकते हैं। आज क्या बनाते हैं? आज स्टोर बनाते हैं। स्टोर में क्या है? 2 अलमारी। तो घर के साइज भी कम हो गया, इंसान के दिल का साइज भी छोटा होता जान लग रहा है। आज उन्हें मेहनत करने की तो प्रवृत्ति रही नहीं, वो मेहनत नहीं कर रहा है, तो वो जो खेत में रासायनिक केमिकल हैं या फिर मशीनरी है उस पर निर्भर हो गया आज, जिसकी वजह से किसान का खर्च तो बढ़िया, शुद्ध लाभ नहीं बढ़िया
2: जी। चलिए इसके साथ में थोड़ा सा आपकी जो गतिविधि रही है केंचुआ पालन की
3: जी,
2: उसके बारे में जानकारी चाहेंगे
3: जी। देखो मैंने 2013 में केंचुआ फार्मिंग का काम शुरू किया
2: जी।
3: उस समय मैं ये मान रहा था कि हाँ, जो आज हम खेती में बदलाव देख रहे हैं, जो किसान आज रासायनिक खादों पर निर्भर है, इसका विकल्प होना चाहिए
2: जी।
3: और विकल्प के रूप में कोई भी फसल हम उगाते अपने खेतों में तो उसको पावर की जरूरत होती है, इंसान को भी एनर्जी की जरूरत है, फसलों को भी एनर्जी की जरूरत है, जमीन को उपजाऊ रखने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है,
2: ताकत चाहिए,
3: ताकत चाहिए
2: कोई भी काम लगा।
3: अब वो ताकत आप कहाँ से दे रहे हो? अगर आप रासायनिक तरीके से दे रहे हो तो वो हमारे सेहत के लिए, हमारी जमीन की सेहत के लिए, दोनों के लिए नुकसानदायक है। और हमारे पास पशु भी होते हैं घर पे, किसान वही है जिसके पास पशुपालन भी है, खेती भी है
2: जी,
3: दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं।
2: बिल्कुल।
3: इसी बीच में मैंने एक विचार आया था कि भाई हम केचुआ फार्मिंग का काम करें ताकि हमारे खेतों के लिए घर पे ही खाद तैयार हो। मेरे पिताजी आकाशवाणी को बार बार सुनते हैं, आज भी सुनते हैं वो
2: जी।
3: तो वो मेरे को बार बार कहते थे, बेटा एक केचुए क्या होते हैं, बार बार परेशान होता था, वो सुनते थे
2: जी।
3: तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार केचुए आपको दिखाऊंगा। वो केचुए मैं कहीं से भी अरेंज करके ले आया और मैंने उसका काम शुरू कर दिया
2: जी।
3: आज मेरे को 12 साल हो गए, लगभग पूरे 12 साल आज हो गए हैं। तो 12 साल में मैंने देखा है कि इस काम में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। अगर किसान भाई महीने में 10 घंटे का टाइम भी इसको दे दे केचुआ फार्मिंग को, मात्र 10 घंटे का
2: महीने में अच्छा,
3: तो भी आप अच्छी प्रकार से 1-2 एकड़ की खेती कर सकते हो, ज्यादा जरूरत नहीं है। दिखाने के लिए तो लोग बोलते कि इसमें काफी मेहनत है, इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, या फिर आप ये लगा लो कि मैं इसका आदि हो चुका हूँ,
2: मेरे
3: को नहीं लगता। लेकिन
2: इसमें शुरुआत फिर किस तरह करनी पड़ेगी?
3: सबसे पहली बात तो ये कि आप एक खेड़ बना ले, जिसको हम यूनिट बोलते हैं,
2: पक्की बना लो,
3: बिल्कुल 500 रुपए में भी काम कर चल सकता आपका।
2: अच्छा,
3: जमीन के अंदर गड्ढा खोदो,
2: ठीक है,
3: 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदो, 2 फीट चौड़ा कर लो, 1.5 फीट गहरा हो गया, लंबाई आप 10-12 फीट की कर लो
2: अपने सुविधा के हिसाब से।
3: हाँ, सुविधा के हिसाब से
2: जी।
3: इसको वहां बनाओ जहाँ छाव हो,
2: ठीक,
3: जैसे पेड़ पौधा उसकी छाव बना लो। अगर छाव नहीं है तो आप टीन या छप्पर कुछ भी उसके ऊपर डाल लो,
2: ठीक है।
3: उसके अंदर आप पोलोथीन डाल दो,
2: नीचे पॉलीथीन बिछा,
3: पहले पॉलीथीन बिछा दो।
2: अच्छा।
3: जो मिट्टी उस गड्ढे में से निकली है उस मिट्टी को उसी के चारों तरफ डाल दो, दूर मत डालो,
2: ठीक है।
3: आपने 1.5 फीट गहरी खोदी है, 1 फीट मिट्टी चुगरदा आ जाएगी तो आपकी 2.5 फीट गहरी होगी। आप इसमें 15 से 20 दिन पुराना गोबर डाल दो,
2: ठीक है।
3: पॉलीथीन थोड़ी सी बड़ी ले लो उसके साइज से। अब आपने एक तरफ पॉलीथीन थोड़ी सी बड़ी डाल दी, उसके अंदर आपने गोबर डाला, पॉलीथीन अंदर बिछा के,
2: ठीक,
3: उसके ऊपर 15 से 20 दिन पुराना गोबर डाल के उसमें आप केचुए छोड़ दो, 1 वर्ग मीटर में 1 किलो केचुए छोड़ दो,
2: 1 वर्ग मीटर में
3: तीन फीट चौड़ी तीन फीट लंबी, इसमें एक किलो केचुए छोड़ दो, आपकी लेंथ 15 फीट है, 15 फीट लंबी यूनिट आपकी, तो 5 किलो केचुए होगी, 5 किलो केचुए एक जगह पे ही छोड़ दो आप, अलग अलग मत बिखरा उसको।
2: तो ये केचुए कोई विशेष प्रकार के हो हैं या कई बार जिस तरह आप देखा भी बारिश हो रही है तो उसमें कई बार लिकड़े आया करें, तो ये वो ही हो हैं या कोई और हो हैं?
3: ये अलग प्रकार का केचुआ जी।
2: अच्छा,
3: ये केचुआ कृत्रिम केचुआ हम इसको मान सकते हैं, एक संकर किस्म इसको तैयार किया गया है, इसको मेरे किसान भाई विलायती केचुआ भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी बोलते हैं, कुछ भाई इसको एसिना फेटिडो भी बोलते हैं, जो कि इसका साइंटिफिक नाम है एसिना फेटिडो,
2: वैज्ञानिक नाम,
3: वैज्ञानिक नाम है, वो भी बोलते हैं, है एक ही, अलग अलग नहीं है, है एक ही चीज।
2: अच्छा,
3: ये लाल केचुआ है, जो बारिश के दिनों में केचुआ निकलता है वो गोबर नहीं खाता।
2: अच्छा,
3: उसकी सहन शक्ति गोबर के अंदर रहने की नहीं है। जो ये लाल केचुआ है इसकी सहन शक्ति इतनी है कि ये गोबर में रह सकता है, आमतौर पर गोबर में गर्मी होती है
2: जी,
3: वो केचुआ गोबर को नहीं खाता, जो हमारा जमीन का केचुआ है पहले का है
2: जी।
3: इसका साइज छोटा है, लाल रंग का है ये, और इसके ऊपर कई प्रकार की धारियां भी होती हैं जब हम सूर्य के सामने इसको लेके देखते हैं तो।
2: अच्छा,
3: तो ये अलग केचुआ है, वो केचुआ अलग है।
2: तो ये केचुए कहाँ से मिलेंगे?
3: जो भी आसपास में आपके किसान भाई ये काम कर रहे हैं आप वहाँ से आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हो।
2: अच्छा
3: जी,
2: तो इसका कोई रेट क्या कुछ रहेगा?
3: रेट तो सर इसमें काफ़ी घपलाबाजी में कहूँगा चल रहा है रेट में।
2: कैसे?
3: कोई भाई आपको 100 रुपये किलो देगा, कोई 500 में भी नहीं देगा।
2: अच्छा,
3: इसमें क्या है कि केचुओं की संख्या कोई नहीं पूछता, कोई भी भाई केचुआ फार्मिंग का काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो पहली बार केचुए खरीद रहे हैं, देने वाला उसको चीटिंग करेगा उसके साथ में।
2: अच्छा,
3: अब मैं किसी को केचुए दे रहा हूँ, मेरे पास आके कोई बोलेगा भाई मेरे को तो 100 रुपये किलो केचुए चाहिए, गोबर के साथ केचुए जाएंगे, अकेले केचुए नहीं होती है।
2: अच्छा,
3: अब गोबर की मात्रा ज्यादा होगी केचुए की कम हो जाएगी, 100 रुपये किलो दे दिए, अगर आपने बढ़िया केचुए चाहिए तो 500 रुपये किलो, केचुए तो वही, उसमें गोबर कम केचुए ज्यादा होगी। इसका एक निचोड़ ये निकलता है कि 1 किलो जो केचुआ है
2: जी
3: वो कम से कम 1000 पीस होने चाहिए, छोटे बड़े मिला के कम से कम 1000 तो होने चाहिए, तब रेट बना उसका।
2: 1 किलो में कम से कम 1000 होने
3: जी, कम से कम 1000 पीस होने चाहिए केचुए के। अच्छा, उसका रेट क्या होगा?
2: अच्छा,
3: क्योंकि ये तो गोबर कम ज्यादा करके चीटिंग कर देते हैं, तो उस चीटिंग को दूर करो। जो भी किसान भाई केचुआ खरीदे वो ये पूछे बेचने वाले से कि आप 1 किलो में पीस कितने दोगे।
2: ठीक है,
3: 1000 पीस होने चाहिए।
2: ठीक है, तो ये हम लेके आगे, और जिस तरह आपने बताया गोबर पुराना होना चाहिए।
3: हाँ, 15 से 20 दिन पुराना कम से कम।
2: तो उसकी उसकी क्या वजह है?
3: इसमें जो ताजा गोबर होता है इसमें गैस होती है सर।
2: अच्छा,
3: अगर आपके पास बायोगैस प्लांट हो तो सबसे अच्छी बात है, इसमें एक पंथ दो काज वाली बात है, आपको गैस भी मिल जाएगी और इस गोबर की गैस निकल जाएगी तो ये खेतों में भी हमारे बहुत अच्छा यूज होता है। गोबर गैस प्लांट जो है वो आम ग्रामीणों के लिए एक वरदान है।
2: बहुत बढ़िया है,
3: क्योंकि इसको ले नहीं रहे लोग, सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, मेरे ख्याल से 16-17 हज़ार रुपये सब्सिडी के भी है।
2: अच्छा,
3: सबसे बढ़िया फायदा क्या है
2: तो इसका? इसका कोई साइज भी हो है, आकार कितना
3: इसके बड़ा? 2-3 प्रकार के आकार हैं, सबसे छोटा साइज है, उससे बड़ा है, मेरे पास 3 घन मीटर का है, 105 क्यूबिक का बताया उन्होंने, तो ये है। इस पर खर्च जितना था उससे ज्यादा की तो मैं गैस यूज कर चुका हूँ।
2: अच्छा, तो इसमें कितना एक पशु की जरूरत पड़ेगी? उनका
3: 2-3 पशु काफी है आपके पास में?
2: 2-3 पशु
3: 50 किलो गोबर काफी है।
2: अच्छा,
3: एक दिन में आप डाल दो।
2: अच्छा,
3: और बहुत सुरक्षित है ये, क्योंकि किसानों के अब हर घर में छोटे बच्चे हैं और कोई भी बच्चा सिलेंडर को चलता छोड़ दे
2: जी,
3: तो उसमें हादसा होने का डर रहता है, लेकिन गोबर गैस प्लांट में तो ऐसी समस्या है ही नहीं
2: जी,
3: उसको चलता छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, घर नहीं जलेगा। इसमें गोबर डाल दिया, गोबर डालने के बाद में जो गोबर निकलेगा, एक तो वो खरपतवार रहित होगा खाद आपका।
2: अच्छा,
3: सबसे पहली बात ये, उसमें खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएंगे।
2: अच्छा,
3: दूसरा उसको अगर आप केचुए को डालोगे तो बहुत ही अच्छी और बेहतर क्वालिटी की

0: 80 दिन मान के चलो,
1: 1.5 महीना लगा लो,
0: ढाई
1: ढाई
0: महीने,
1: ढाई महीना।
0: 2.5 महीने में आपको खाद मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद हर हफ्ते आपको खाद मिलेगी।
1: अच्छा, मतलब शुरुआत में पहले टाइम लगेगा।
0: शुरुआत में टाइम लगेगा, उसके बाद तो फिर इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी कैचुए की। जो कैचुआ है वो लगभग लगभग आपका हर 33 घंटे में एक अंडा दे देता है, सप्ताह में 5 अंडे।
1: अच्छा,
0: एक अंडे में से 2, 3, 4 तक बच्चे निकल जाते हैं।
1: अच्छा,
0: आज कैचुए ने अंडा दिया, ये अंडा तैयार होने में 40 से 50 दिन का समय लगता है। ज्यादातर जो अंडा तैयार हो जाता है वो 45 दिन में बच्चे निकल जाते हैं उसे।
1: अच्छा।
0: और जब कैचुए का बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो वो वयस्क हो जाता है, फिर वो अंडे देने शुरू कर देता है।
1: ठीक है।
0: एक आंकलन में हमने पाया है कि 10,000 अगर हम कैचुए ले ले, यानी 10 किलो कैचुए हमने ले लिए,
1: ठीक है,
0: उनका ठीक से देखभाल करी तो 1 साल के बाद में 1,27,00,000 कैचुए हो जाते हैं।
1: अच्छा,
0: यानी कि 1 क्विंटल 27 किलो, 10 किलो के।
1: अच्छा,
0: अब आप मान के चलो 12 गुना ज्यादा कैचू हो जाते हैं, इसका
1: उत्पादन हो जाए इसका।
0: जी,
1: तो इसमें देखभाल की करनी पड़ेगी, क्योंकि अपना तो जाड्डा भी चौका पड़ा है, गर्मी भी है, वो भी काफी हो गया है।
0: इसमें गर्मी में सबसे बढ़िया बात है कि आप पूड़ी है बाजरे की, पराल है, ज्वार की पूड़ी है, या टाट की बोरी है, गर्मियों में आप इसके ऊपर यूनिट को ढक दो,
1: ठीक
0: है, और उस पूड़ी के ऊपर, पराल के ऊपर, या जो आपने टाट की बोरी घेरी है उनके ऊपर गीला रखो, अंदर गर्मी नहीं जाएगी, कैचुए अपने आप सुरक्षित रहेंगे। सर्दियों में हम कैचुए को कैसे बचाएं? कई बार तो ऐसा होता है कि तापमान 0 के आसपास चला जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस तो आम हो जाता है
1: जी।
0: तो इस दौरान आप ताजा गोबर यूनिट के ऊपर से डाल दो। ताजा गोबर में गर्मी होती है,
1: अच्छा,
0: वो पाड़े को ऊपर रोक लेगा और अंदर उसकी ठंड नहीं जाएगी, आपके कैचुए सुरक्षित बच जाएंगे
1: जी।
0: कैचुआ ठंड में कब मरता है? गर्मी में ज्यादा मरता है।
1: अच्छा, और बीच में कुछ देखभाल की जरूरत पड़ेगी, पानी उसमें मारना है या?
0: हाँ, पानी के लिए आप इसमें देखें, क्योंकि कैचुए के दांत नहीं होते, ये लिक्विड में चूसता है। आपने जैसे कैचुए छोड़ दिए
1: जी,
0: आप इसको देखते जाएं, अगर आपने गोबर में नमी कम नजर आ रही है, गोबर को हाथों में दबा के देखें, अगर उंगलियों से टपके टपके पानी आ रहा है तो आपकी यूनिट में नमी पर्याप्त है। अगर पानी ज्यादा रहे तो आप कोशिश करें 1 सप्ताह 10 दिन तक पानी ना डालें। अगर उसमें से 1 बूंद पानी की भी नहीं आ रही है तो आप उसमें तुरंत पानी लगा दें। ये कुछ भाइयों के दिमाग में आती है कि कैचुए जल्दी मर जाते हैं, केवल गोबर की गर्मी से कैचुआ मरता है, ना भूख से मरता है, ना प्यास से मरता है
1: जी। तो इसमें कुछ इस तरह का भी है कि भाई अगर हम नमी कम रखें या सर्दी गर्मी का कुछ असर हो तो ये नीचे जमीन में चले जाएंगे?
0: अगर कहीं रास्ता है तो चले जाएंगे।
1: अच्छा,
0: जब हमने पोलोथीन बिछाई है तो जमीन से तो संपर्क कट गया इनका, वो गोबर के नीचे चले जाते हैं।
1: अच्छा।
0: वो वहीं पर रहेंगे जहां उनको नमी होगी। अगर हमने 5 दिन पानी नहीं डाला, 10 दिन पानी नहीं डाला, तो कैचुआ अपने शरीर में से खुद पसीना निकाल लेता है।
1: अच्छा।
0: और आसपास के गोबर को गीला कर लेता है, ये फिर झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं, 100 100 200 200, और वो इकट्ठा होकर आसपास के एरिया को गीला कर देते हैं। जब गोबर गीला हो जाता है तो अपना काम वहां से वो चला लेते हैं।
1: ठीक है। अच्छा, अब उसका जो खाद बनेगी उसकी के पहचान रहेगी और उसने किस तरह इकट्ठा करें और किस तरह इसका फिर बिक्री करें।
0: जब हम देखेंगे कि हमारे 60 दिन के बाद में हमने जो यूनिट बनाई थी उस यूनिट में जो गोबर है वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: इसका मतलब है कि आपके केचुए ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बाजरे के दाने के समान सफेद सफेद कलर के आपको छोटे छोटे दाने नजर आएंगे।
1: अच्छा,
0: इसका मतलब है कि उसमें कैचुए अंडा देना शुरू कर रहे हैं।
1: ठीक।
0: जब कैचुआ अंडा देना शुरू कर रहा है तो आपके कैचुए बिल्कुल ठीक हैं और सुटेबल हो चुके हैं, ये इसके अंदर सेट हो चुके हैं। 2 महीने के बाद में हम देखेंगे कि हमारी यूनिट नीचे जा रही है। अब हमने इसको देखना उगाड़ के।
1: अच्छा।
0: इसको हटा के पूड़ी को, पराल को जो हमने ढके है, आपको चाय पत्ती जैसी, जैसे हमारी चाय पत्ती होती है ना, ऐसी ब्लैक ब्लैक सी दानेदार गोबर की खाद मिलेगी।
1: अच्छा।
0: जब हमने इसको निकालना है, आप देखो कि 3 इंच 4 इंच तक हमारी खाद तैयार हो चुकी है, तो आप इसको सुबह हटा दो, जिसको हमने ढकया है।
1: अच्छा।
0: पूड़ी, पराल या टाट, जो भी जिसे ढकया उसको हटा दो। इसमें पानी डालना बंद कर दो आप।
1: अच्छा,
0: अब क्या होगा, कैचुए जो है वो नमी में नीचे चले जाएंगे। सूर्य के सामने कभी कैचुआ नहीं आता, वो अपने आप को छुपाने के लिए ताजा गोबर में चला जाएगा।
1: ठीक।
0: और ऊपर ऊपर से हम इसको धीरे धीरे 3 इंच की परत जहां तक तैयार है उसको उतार के किसी जूट की बोरी में डाल लेंगे या कहीं अंधेरे में उसको इकट्ठा कर देंगे।
1: अंधेरे में?
0: अंधेरे में इकट्ठा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: अच्छा।
0: इसके अंदर कैचुए के अंडे होते हैं।
1: ठीक है।
0: अंडे खेत में जाके पनप जाएंगे, आपके खेत में भी कैचुए हो जाएंगे।
1: ठीक
0: जो खेत में हमारी घास फूस है, पेड़ पौधों के पत्ते हैं, फसल अवशेष हैं, जैसे अभी पराली बहुत ज़्यादा पड़ी है खेतों में
1: जी।

0: गेहूं के टाइम पर गेहूं के फांस बहुत ज्यादा होते हैं, जब वो गड़ना शुरू करेंगे तो हमारे केंचुए उनको खा के खाद में बदल देंगे।
1: ठीक
0: इसका
1: है।
0: सबसे बढ़िया फायदा क्या होगा कि आपका खेत ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो रहा है, आप उसमें जहर ना डालें। जैसे ज्यादातर भाई हैं जो अपने खेतों में क्लोरो डालते हैं या थाइमेट वगैरह डालते हैं, आप क्लोरो थाइमेट की जगह पे खेत में कोलडी का इस्तेमाल करो। कोलडी या ग्रेडी जो होती थी ना,
1: जी।
0: उसका इस्तेमाल करो साल में एक बार। ना आपने पादान डालनी, आपने जड़ के कीड़े की कोई दवाई नहीं डालनी, मात्र 3 मिनट में आपका कीड़ा मर जाएगा। जैसे कोलडी लगी,
1: जी
0: कीड़ा खत्म, केचुआ नहीं मरेगा उससे,
1: अच्छा
0: क्योंकि केचुआ जमीन के नीचे चला जाता है, वहां पर नहीं होता है।
1: ठीक। तो इसमें कितनी मात्रा है वो एक एकड़ में हमने डालनी पड़ेगी अगर केंचुआ खाद हम पूरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो?
0: अगर आप टोटली केचुआ खाद इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे जरूरी है कि आप इसमें कम से कम भी 5 क्विंटल प्रति फसल
1: अच्छा।
0: खेत में इसका प्रयोग करो। धीरे धीरे करके आपकी जो आज पैदावार है, जो रासायनिक पैदावार है, इससे ज्यादा हो सकती है आपकी पैदावार 2 साल के बाद, 3 साल के बाद में,
1: तरीका की रहेगा?
0: जब हमारा खेत जुताई कम करते हैं, खेत की बिजाई से पहले जुताई, उसमें आप इसको डाल दो। इसमें ध्यान ये रखो, जैसे सर्दी का महीना है, कुछ किसान भाई शाम को केचुआ खाद डाल के खेत में आ गए, जुताई सुबह करी,
1: अच्छा
0: रात को पाला गिर गया, पाला
1: हाँ
0: गिर गया तो जो अंडे हैं जीवित हैं वो पाले को सहन नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। या फिर जून का महीना है, दिन भर लू चल रही है, तो किसान भाई सुबह खाद को खेत में बिखेर के आ गए, शाम को जुताई करेंगे, तब तक वो अंडे खत्म हो जाएंगे। आपने अभी खाद डाली है, खाद डालते ही आप खेत की जुताई करो, सबसे बढ़िया है, वो खेत के अंदर मिक्स हो जाएंगे,
1: हाँ मिल जाए जमीन
0: मिल
1: में।
0: जाएंगे,
1: हाँ
0: और उसके बाद में आप खेत के ऊपर पट्टा लगाओ, बिजाई करो, पानी दो, कुछ भी करो,
1: तो उसमें जो अंडे उसके रह जाए हैं वो फिर जमीन में काम करें हैं
0: बिल्कुल करेंगे जी, 100% करेंगे
1: उसमें केंचुए लेकर के?
0: जी। आप 3 साल तक ये केचुआ खाद डालो, फिर आपने खाद डालने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा।
0: आपके खेत में इतने केचुए हो जाएंगे कि खेत को, जैसे आज पानी सोखने की क्षमता कम होगी जमीन की,
1: जी
0: और भी कई समस्याएं हमारे बीच में आई हैं, अगर आपने केचुआ खाद 3 साल डाल दी तो आपके खेत में अक्षारीयपण नहीं होगा, जो जमीन का पीएच मान बढ़ता है वो संतुलित हो जाएगा,
1: जी
0: एकदम ठीक हो जाएगा, जमीन में पानी पीने की क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि केचुआ जमीन के अंदर सुराख करेगा,
1: ठीक
0: ऊपर
1: है
0: नीचे जाएगा।
1: जी।
0: दूसरा, घास फूस पराली है जो हमारे खेतों में, इसको गला के खाद में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा, तो हमारी फसलों को ऑटोमेटिकली जो खाद है वो मिलती रहेगी, और वो भी संतुलित खाद। आज किसान भाई पूछता है, जी मेरे खेत में क्या कमी है? ज्यादातर किसान भाइयों के खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है,
1: जी
0: जिंक है, बोरोन है या कोई दूसरी है। किसान भाइयों का ध्यान केवल यूरिया डीएपी तक ही सीमित है। कुछ किसान भाई थोड़े से जागरूक हुए हैं, जिन्होंने अपने खेतों में सल्फर, जिंक, पोटाश ये भी डालना शुरू किया, लेकिन जो गोबर की खाद है, जो केचुआ खाद है, इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, आंख बंद करके डाल दें। अगर आपने अपने खेत में 5 की जगह 10 क्विंटल खाद डाल दिया
1: जी
0: तो भी आपकी फसल पर कोई असर नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगी। 2 क्विंटल डालो, 5 डालो, 10 डालो, ज्यादा भी डाल दोगे तो आपकी फसल में नुकसान नहीं होगा इससे।
1: जी। तो जयकरण भाई बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है, आपका काफ़ी अनुभव रहा है, और किसान भाई अगर इस तरीके को अपनावें, केंचुआ पालन को अपनावें हैं, और जिस तरह आपने बताया है कि गोबर गैस प्लांट लगा लें तो वो दोनों तरह से उसमें फ़ायदा होगा।
0: इसमें एक और बात कहना चाहूंगा,
1: जी
0: आज बेरोजगार भाई हैं,
1: जी
0: अगर वो रोजगार के रूप में केचुआ फार्मिंग का काम करते हैं
1: जी
0: तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप डेयरी फार्मिंग करो,
1: जी
0: 2 भैंस 4 भैंस बंद हो, आज दूध की कीमत अच्छी होगी है,
1: बिल्कुल।
0: और पशुओं के गोबर को आप केचुआ खाद और बायोगैस प्लांट के माध्यम से यूज करो, आपका पैसा बचेगा। आप 8,000 की, 5,000 की जो नौकरी बार कर रहे हो, उससे बेहतर है कि आप अपने घर पे स्वरोजगार करो, वो रोजगार करो जो दुनिया ना कर रही हो।
1: जी
0: आज शहरों में, स्कूलों में, गार्डन में, पार्क में, हर जगह पे, नर्सरियों में केचुआ खाद की बहुत ज्यादा मांग है,
1: मांग है
0: और इस मांग का भी समय आ रहा है।
1: जी
0: आज देश रासायनिक को छोड़ के जैविक की तरफ बढ़ रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो मौके का लाभ उठा के बेरोजगार भाई स्वरोजगार के रूप में केचुआ फार्मिंग को अपनाओ,
1: जी
0: तो आपको इसके भविष्य में बहुत अच्छे स्कोप नजर आते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस सब जानकारी के लिए भाई जयकरण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, नमस्कार।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: तो भाइयों, ईब एक सुनेंगे रागनी फूल कुमार और उनके साथियों की गाई हुई।

तो भैया ने ये तो सुनी रागनी फूल कुमार और उनके साथियों की गायो ही भैयो कुछ बाजार भाव आ रहे हैं। भैया ने बाजार भाव बता दिया। गेहूं का जो भाव है रोहतक में 2585, पानीपत में 2585, गुड़गांव में 2580, नरवाना में 2585 और फरीदाबाद में 2600 रुपये प्रति क्विंटल। चने की बात करें तो रोहतक में 6300 रुपये प्रति क्विंटल, पानीपत में 6600, गुड़गांव में 6950, नरवाना में 6600, फरीदाबाद में 7160 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों की बात करें तो रोहतक में 6250, पानीपत में 6050, नरवाना में 6200, फरीदाबाद में 6300 रुपये प्रति क्विंटल। और मूंग की बात करें तो रोहतक में 9700, पानीपत में

0: में 9800, गुड़गांव में 9800, नरवाना में 9800, फरीदाबाद में भी 9800 रुपये प्रति क्विंटल। और प्याज की बात करें तो रोहतक में 1340, पानीपत में 1500, गुड़गांव में 1450, नरवाना में 1350 और फरीदाबाद में 2000 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों के तेल की भाव की बात करें तो रोहतक में 16000 रुपये प्रति क्विंटल, पानीपत में 16250, गुड़गांव में 16200, नरवाना में 16200, फरीदाबाद में 16200 रुपये प्रति क्विंटल। ये कुछ बाजार भाव थे। और भाइयों, ईब जो कृषि जगत कार्यक्रम है उसका समय हुआ समाप्त। ईब सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार। भाइयों, ग्रामीण संसार में आज बालक मंडली, और बालक मंडली में जो बच्चे हैं वो अपना फ़ोन करें और अपनी जो भी उन्होंने कविता है, कोई चुटकुला है, कोई पहेली है, या जो भी बच्चे तैयार कर रहे हैं वो सुनावें। इसके लिए फ़ोन नंबर बता दें, 012-62 रोहतक का STD कोड है, 255-446, 255-447 और 255-448। ये तीन फ़ोन लाइन काम करेंगी, तो बच्चे अपना फ़ोन करें। अभिभावक यदि उनके बात करावें तो पहले वो फ़ोन मिला के और बच्चे को दे दें ताकि हम बच्चे से बात कर सकें। और ये ज़रूरी है कि वे जो बच्चे हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल हों। तो फ़ोन लेना शुरू करते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, तो शायद देख, हेलो हेलो, बच्चे का फ़ोन आया था, वो शायद फ़ोन कट गया। भाई दोबारा प्रयास करो। हेलो,
1: हेलो दादाजी,
0: हाँ नाम बताओ भाई अपना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते भाई, नमस्ते, नाम बताओ अपना।
1: वीर
0: वीर, कहाँ से बोल रहे हो?
1: बहन सुरजन से कविता
0: हाँ बहनी सुरजन, क्या सुनाएगा भैया वीर? कविता सुनाओ भाई।
1: मंडे मंडे स्टार्ट दा डे, मंडे मंडे लेट्स गो प्ले, ट्यूजडे ट्यूजडे क्लैप क्लैप क्लैप, ट्यूजडे ट्यूजडे टैप टैप टैप टैप टैप, वेंसडे वेंसडे जम्प सो हाई, वेंसडे
0: हाँ
1: वेंसडे टच द स्काई, थर्सडे फ्राइडे फन ऑल डे, सैटरडे संडे हुर्रे हुर्रे। थैंक
0: अच्छा,
1: यू।
0: धन्यवाद भाई। थोड़ा हाँ बिल्कुल अच्छे से याद करा कर, या लिख लिया कर, लिख कर बोल दिया कर, है? चलो ठीक है, धन्यवाद। अगले बच्चे फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, शायद बच्चे का फोन था लेकिन कट गया। तो भाई जो बालक मंडली कार्यक्रम है वो स्पेशल बच्चों के लिए है, उसमें बच्चे अपने इस कार्यक्रम में भाग लें। हेलो हेलो हेलो,
1: हेलो, भविष्य।
0: हाँ नाम बताओ भाई। भविष्य, कहाँ से बोल रहा भविष्य भाई?
1: बैनी सुरजन से
0: बैणी सुरजन से। हाँ तो क्या सुनाएगा भविष्य?
1: कविता।
0: कविता सुना भाई।
1: बार रीछ ने अपने सभी दोस्तों को दावत पर बुलाया, उसके

0: आनंद लिया।
1: बिल्कुल मजा लिया भाई, भविष्य है थोड़ा याद करके जब सुनाया कर, हाँ तैयारी कराया करो, हैं ठीक है भाई, धन्यवाद। हेलो हेलो
2: बोल
1: हेलो, नाम बताओ भाई अपना पहले तो। क्या नाम बताया? चिराग। कहाँ से बोल रहा चिराग? अच्छा, क्या सुनाएगा? कविता सुना भाई।

0: हाँ करवा भाई चिराग, अपने भैया से भी करा दे। हेलो हेलो हेलो भाई चिराग, भैया ने तो बात नहीं की, फोन कट गया उसका। हेलो, शायद फोन और भी बच्चे का था वो भी। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, शायद बच्चे का फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, शायद बच्चे का फोन तो आ रहा था लेकिन क्या दिक्कत हो रही है। हेलो हेलो भाई, बच्चे इसमें देखो, एक तो अपनी जो तैयारी है वो ज़रूर करें, जो भी कविता बच्चे सुनाए हैं उसको दो बार चार बार पहले पढ़ लें और फिर उसको सुनाए। हेलो हेलो हेलो, बच्चे का फ़ोन तो आ रहा है। हेलो हेलो, तो भाई जो भी बच्चा इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है वो पहले अपनी थोड़ी तैयारी करे, दो बार चार बार जो भी कविता सुनानी है उसको अच्छे से याद करे, या अपने हाथ में कागज़ लेकर भी सुनावे, और अच्छी अच्छी जो कविताएं हैं वो अपना याद करें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बच्चों का स्पेशल प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम के हिसाब से। हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो,
0: हाँ जी, बच्चे से बात कराओ, फोन भी मिलता है। हेलो हेलो, फोन तो मिल रहा था, बच्चे का बात भी हो रही थी उनके अभिभावक से। हेलो हेलो, तो इसमें जो बच्चे हैं उसमें अच्छी अच्छी जो कविताएं हैं। हेलो हेलो, हाँ नाम बताओ भाई। हाँ
1: नमस्ते अंकल,
0: नमस्ते भाई, नाम बताओ।
1: मेरा नाम राधिका है। अंकल
0: राधिका, कहाँ से बोल रहे राधिका?
1: गांव मायना से।
0: मायना
1: अंकल
0: से। हाँ, आप तो अच्छी कविता सुनाते हो, सुनाओ,
1: गीत,
0: गीत सुना दे, गीत भी सुनेंगे।
1: न्यू तो सारी दुनिया जाने, बेटे जैसी डाको न्या, खोटी बाणी रे बोले मत न्या, मैं के तेरी माँ को न्या, हो तेरे हूँ मेरे बेटा, मैं बहुत दुख पाई थी, तेरे पिता ते के सुन के मन दे गुरु गौ छटा।

जगा को न्या, खोटी बाणी रे बोले मत न्या, मैं के तेरी माँ को न्या, हो छे मई।

0: ਚੜਿਆ ਬਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ ਸਾਜਣ ਸਿੰਘਣੀ ਕਾ ਸਿਰ ਖੜਿਆ ਮਾਂ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਈ ਬੇਟੇ ਕੇਹੂ ਹਾਂ ਕੋ ਨਿਆ ਖੋਟੀ ਬਾਣੀ ਰੇ ਬੋਲ ਮਤਨਿਆ ਮੈਂ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਨਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਬਰੂ ਆਈ ਰੇ ਜਵਾਨੀ ਲਾਲ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਟੂਲ ਗਿਆ ਜਬ ਆਈ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋੜੀਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਭੂਲ ਗਿਆ ਮਾਂ ਕੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਰੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੇ ਕੇ ਮਨ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋ ਨਿਆ ਖੋਟੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲੇ ਮਤਨਿਆ ਮੈਂ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਨਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ।
1: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਰਾਧਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਹੈਲੋ।
2: ਹੈਲੋ।
1: ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਬਾਈ।
2: ਨਮਸਤੇ।
1: ਨਮਸਤੇ ਬਾਈ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਪਹਿਲੇ।
2: ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇਵਰਾਜ।
1: ਦੇਵਰਾਜ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੇਵਰਾਜ?
2: ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਧ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਾ।
1: ਓ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਬਾਈ ਬਤਾ ਸੁਣਾ, ਕਿਆ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੇ ਪੋਤੇ?
2: ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਇਮ।
1: ਪੋਇਮ ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਾਈ।
2: ਮੱਖਣ ਚੋਰ ਨੰਦਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਂਦੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਡੋਰ ਹਰੇ ਕਰਸ਼ਨ ਹਰੇ ਮੁਰਾਰੀ ਪੂਜਤੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲਕਰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਏ ਹਾਥੀ ਗੋਰਾ ਪਾਲਕੀ ਜੈ ਕਨਿਆ ਲਾਲ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ।
1: ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਸੁਣਾਇਆ ਬਾਈ ਆਪਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਕਾ ਫੋਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਥਾ। ਹੈਲੋ। ਤੋ ਬਈ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਵੋ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
3: ਹੈਲੋ ਅੰਕਲ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ।
1: ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਬਾਈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
3: ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਮਸਤੇ।
1: ਹਾਂ ਨਮਸਤੇ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬਾਈ?
3: ਅੰਕਲ ਗਾਓ ਸੁਣਾ ਰਹੀ
1: ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੇਵਰਾਜ ਕੀ ਬਹਿਣ ਨੇ?
3: ਹਾਂ ਅੰਕਲ।
1: ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ ਬੇ।
3: ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨਾ ਉਪਜਾਓ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕਾ ਮਾਨ ਬਢਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਜਾਏ, ਵੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਲਾਏ। ਸੂਰਜ ਧੂਪ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੇ ਜੀਤਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋ ਹਸਕਰ ਪੀਤਾ, ਖੇਤੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਸ਼ਮ ਦਿਖਾਏ, ਹਮ ਸਭ ਕੀ ਥਾਲੀ ਭਰ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸ਼ਾਨ, ਉਸ ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਅਭਿਮਾਨ, ਆਓ ਸਭ ਮਿਲਕਰ ਮਾਨ ਬਢਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਪਨੇ ਕੋ ਸੱਚ ਕਰਾਏ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਬਾਈ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਪੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਫੋਨ ਲਿੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਬਾਈ ਆਪਣਾ। ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਆਪਣਾ। ਨਮਸਤੇ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ। ਹਾਂ ਨਮਸਤੇ ਬਾਈ, ਨਮਸਤੇ, ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਆਪਣਾ।
4: ਅਮਿਤ।
1: ਅਮਿਤ ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਅਮਿਤ
4: ਮਾਇਨਾ।
1: ਅੱਛਾ ਮਾਇਨਾ ਸੇ। ਬਾਈ ਅਮਿਤ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਗਾ ਅੱਜ?
4: ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਮੇਰੀ।
1: ਹਾਂ
4: ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਤੰਗ ਤੰਗ।
1: ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ।
4: ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਤੰਗ ਤੰਗ ਤੰਗ ਤੰਗ ਉੜਤੀ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਆਸਮਾਨ ਮੇਂ ਜਾਤੀ ਆਸਮਾਨ ਮੇਂ ਜਾਤੀ ਉੜਤੀ ਆਤੀ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖੂਬ ਦਿਖਾਤੀ ਉੱਪਰ ਆਤੀ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਆਤੀ ਕਭੀ ਪਲਟੀ ਗੋਤਾ ਖਾਤੀ ਟੁਕਟ ਟੁਕਟ ਟੁਕਟ ਮੇਰੀ ਪਤੰਗ ਸਭ ਮਨ ਕੋ ਖੂਬ ਨਵਾਤੀ।
1: ਹਾਂ
4: ਥੈਂਕ ਯੂ,
1: ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਅਮਿਤ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਅੱਛੀ ਸੁਣਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਵਿਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो हेलो। इसमें देखो बच्चे पहले अपनी जो कविता है उसको याद करें, उसको दो बार चार बार पढ़ें, पढ़ने के बाद ही फिर जैसे सुनाओ तो उसमें किसी प्रकार की जो झिझक है वो नहीं रहती। हेलो हेलो हेलो। बच्चे का फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो भाई, नाम बताओ पहले अपना। हाँ नमस्ते, नाम बताओ भाई पहले अपना।
4: कृतिका खोला पुलिस लाइन नॉर्मल।
1: कृतिका।
4: हाँ पोयम।
1: हाँ क्या सुनाओगी कृतिका? पोएम सुनाओ भाई।
4: माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया है क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, सात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खल कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद होकर खर सर से, तो हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। धन्यवाद।
1: बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई। और अगले बच्चे का फ़ोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: हेलो,
1: हाँ नाम बताओ जी।
5: बोलो। राम राम जी। लो
1: राम राम जी।
5: बच्चा बात करा जी, करना एक
1: हाँ
5: बात।
1: कराओ जी।
4: दादा जी राम
1: राम
4: राम।
1: राम भाई, नाम बताओ पहले अपना। अपना नाम बताओ।
4: बोलो दादा जी राम राम।
1: राम राम भाई, राम राम, नाम बताओ पहले अपना।
4: मोक्ष शर्मा।
1: मोक्ष शर्मा। तो क्या सुनाएगा भाई आज? हेलो।
4: बस छोटी अनिंदा मोरनी, कबक अनिंदा मोरनी, कोम कोम अनिंदा मोरनी, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक करने कर अनिंदा मोरनी। थैंक यू। हम बस बस गायत्री मंत्र भी सुनाऊंगा।
1: हाँ गायत्री मंत्र भी सुना भाई, बहुत अच्छी बात है। गायत्री मंत्र तो जरूर सुनाना चाहिए था तेने। हाँ
4: प्रचोदयात।
1: बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छे से याद किया। और थोड़ी तैयारी करया कर। धन्यवाद भाई। हेलो हेलो हेलो हेलो। कई बार बच्चे का फोन आता है लेकिन वो रिसीव नहीं हो पाता। हेलो हेलो हेलो। इसमें जो बच्चे हैं वो पूरे सप्ताह तक कोशिश करते हैं भाई हमने रेडियो पर सुनाना है। और इसका एक बहुत अच्छा फायदा ये भी है कि हेलो।
6: हेलो,
1: हाँ जी नाम बताओ जी, कहाँ से बोल रहे हो?
6: बच्चे से बात करी हो जी।
1: हाँ कराओ जी।
6: हेलो,
1: हाँ नाम बताओ भाई।
6: नमस्कार अंकल।
1: नमस्कार, नाम बताओ भाई पहले अपना।
6: मैं आरती बोल रही हूँ, गांव डाणी मिठी से,
1: हाँ
6: श्री शिवराम की
1: आरती।
6: पोती,
1: आरती कहाँ से बोल रही है?
6: गांव डाणी मिठी से।
1: अच्छा गांव ढाणी मिट्टी से। तो क्या सुनाओगे आज?
6: मैं आज आपसे एक कविता सुनाना चाहती हूँ।
1: हाँ सुनाओ, आराम आराम से सुनाना, ज़्यादा तगाजा मत करना, आराम से सुनाओ।
6: क्या क्या खोजते हो दुनिया में, जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्यों देखते हो औरों में, जब तेरा मन ही दर्पण है। दुनिया बस एक दौड़ नहीं, अब तू अश्व नहीं है धावक। रुक कर खुद से बातें कर ले, अंतर मन को शांत तो कर ले, सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो। श्वास अच्छा है कि आदत डालो, जीवन को तुम खुलकर जी लो, आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो, जीवन का यह रहस्य समझ लो और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। धन्यवाद अंकल।
1: बहुत बढ़िया आरती, बिल्कुल आपका एक एक शब्द समझ में आया और बहुत अच्छी आपने तैयारी कर रखी है। इस तरह हर सप्ताह आप सुनाया करो कविता, धन्यवाद आपका। और अगला फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। बच्चों से कई बार बात नहीं हो पाती और कई बार जो बच्चे हैं उनका जो फ़ोन है वो मिलने के बाद भी कट जाता है, कई कारण होते हैं उसके। तो आप बार बार ट्राई करो और फ़ोन मिलाओ और अपनी जो कविता है वो सप्ताह भर उसमें थोड़ा सा जो दोहराई है कविता की वो ज़रूर करते रहो। हेलो हेलो हेलो हेलो। हेलो तो भाई देखो बच्चों, एक तो जो हमारा खान पान है वो अच्छा होना चाहिए और उस अच्छे में एक सबसे ज़रूरी बात है कि कभी भी जो छोटे बच्चे हैं उनको मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं। हेलो हेलो, शायद बच्चों का फ़ोन आवा है लेकिन हम नहीं उठा पा रहे। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो। तो भाई एक तो जो बच्चे हैं ना वो तली भुनी हुई चीज़ें ना खाएं। हेलो, क्योंकि उससे जो बच्चों के दांत हैं वो बहुत छोटी उम्र में ख़राब हो जाते हैं। और एक जो मोबाइल है, हेलो हेलो, बच्चों से बात नहीं हो पा रही। हेलो, शायद कुछ लाइन में कोई न कोई ख़राबी है जिसके कारण हम बच्चों से बात नहीं कर पा रहे। तो देखो जो मोबाइल है वो एक अच्छी चीज़ है ये कहा जा सकता है, लेकिन उसकी अधिकता है जो बच्चों के लिए नुकसान का कारण भी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं जो ज़्यादातर मोबाइल और टीवी देखते हैं तो उससे बच्चों की जो आँख हैं उसमें आँखों में की जो रोशनी है वो बहुत कमज़ोर हो जाए। हेलो हेलो हेलो हेलो, तो उससे देखो जितनी हमारी मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई यदि हमारी ऑनलाइन है तो वो फ़ोन से हमने करनी चाहिए। और उसका एक फ़ायदा भी है कि आज का की जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी हमने प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ की जो अधिकता है वो नुकसानदायक भी है। हेलो हेलो हेलो, तो जो हेलो बच्चों के फ़ोन बार बार आ रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे, लाइन में कोई कमी है। हेलो हेलो हेलो, तो जो बच्चे हैं वो एक तो जो तड़ी बनी हुई चीज़ हैं जो दुकानों की और रेहड़ी की लगी हुई जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसे ये कुरकुरे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं चटपटी चीज़ें हैं जिनसे जो काफ़ी नुकसान बच्चों को करे हैं, कई उनके जो हृदय के रोग हैं वो भी हो जाते हैं, बालक उम्र में जो बच्चों के दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत बनती है। और विशेषकर हम बात करें कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग ना करें और टीवी का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसके करने से उनकी आँखों के ऊपर जो प्रभाव है वो पड़ा है। और जितना हम कहें कि भाई देखो इन चीज़ों का भी ये ज़रूरी है। हेलो हेलो हेलो हेलो
7: हेलो
1: हाँ जी, हाँ जी, नाम बताओ। हाँ, बच्चे से बात कराओ जी। हेलो, हाँ नमस्ते भाई, नाम बताओ। हाँ नाम बताओ भाई अपना। हाँ हाँ, क्या सुनाओगे, सुनाओ भाई सुनाओ। फोन कटिया नहीं है आपका, आप सुनाओ। हाँ सुनाओ भाई,
4: खुशी।
1: खुशी क्या सुनाओगे भाई?
4: कविता।
1: हाँ कविता सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ।

0: मेरे घर आना, खीर पुआ सब ये खाना।
1: चलो बहुत अच्छा भाई।
0: हेलो,
1: हेलो हेलो हेलो हेलो। हाँ नाम बताओ भाई अपना। राम राम भाई, राम राम, नाम बताओ एक बार। हाँ हर्ष, क्या सुनाएगा भाई?
0: चाहता
1: हाँ
0: हूँ।
1: सुनाओ भाई, कविता सुनाओ। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बहुत अच्छी बढ़िया जो कविता है आपने सुनाई। और जो बच्चे हैं देखो, वो अपनी पूरी तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद ही फिर, जैसे कई बच्चे हैं भूल जाते हैं, तो वो अपनी तैयारी करें, और जो अगले सप्ताह है फिर बच्चों से मुलाकात करेंगे बुधवार के दिन, और जब तक अपनी तैयारी करें, और जो तली भुनी हुई चीज़ है या ज़्यादा मोबाइल देखना है, इन चीज़ों से दूर रहें। बच्चे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्मी का मौसम है, समय समय पर जो अपना पानी है वो ज़रूर पीते रहें, नींबू है, पानी है, शिकंजी है, ये ज़रूर समय समय पर लेते रहें। जो बाज़ारी चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इनको इनसे दूर रहें, और अपने जो स्वास्थ्य का बच्चे ध्यान रखें। भाइयों सभी बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बालक मंडली को यहीं समेटते हैं। जिन बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि अगला जो बुधवार होगा उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होंगे उनको इसमें शामिल करेंगे, तो अपनी जो कविता है या जो प्रस्तुति है उसको तैयार रखें। इब सारे बच्चे बोलेंगे जय हिंद। भाइयों इब सुरेंद्र भाई ने भी इजाज़त दो, सारे बाण भैया ने राम राम।

ग्रामीण संसार के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम बालक मंडली। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार।

किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना फिल्म नमक हलाल से। गीत प्रकाश मेहरा का था, संगीत बप्पी लहरी का। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं हेरा फेरी फिल्म से। आवाज़ें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और साथियों की। गीत अनजान ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। आशा भोसले की आवाज में सुनते हैं रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

आशा भोसले की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। किशोर कुमार की आवाज़ में आपको सुनवाते हैं विदाई फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

चोर मचाए शोर फिल्म का गीत सुनते हैं किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत इंद्रजीत सिंह रागी का है, संगीत रविंद्र जैन का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हम पांच फिल्म से। आवाजें हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। शैलेंद्र सिंह, आरती मुखर्जी, आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में सुनते हैं परवरिश फिल्म का गीत। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपको सुनवाते हैं चाचा भतीजा फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ फिल्म संगीत कार्यक्रम। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत।

आज तुझको चाहत से ज्यादा समझा है, तुझको मोहब्बत से ज्यादा, ये मैं जानता हूं या दिल जानता।

जान मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब होंगे समाचार, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी। आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।

0: नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
1: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: The visit to the 4 European countries.
2: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
3: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
1: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
4: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
5: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
1: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक

श्री रामचंद्रा मयनपति और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में गीत अभी आपने सुना, बोल समीर के थे। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 2012 में प्रदर्शित हुई फिल्म खिलाड़ी 786 के कुछ गीत। इस फिल्म का निर्माण किया था ट्विंकल खन्ना, सुनील लूला और हिमेश रेशमिया ने। इस फिल्म का निर्देशन किया था आशीष आर मोहन ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई अक्षय कुमार, असिन, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर, मुकेश ऋषि, हिमेश रेशमिया, गुरप्रीत घुग्गी, मनोज जोशी, राहुल सिंह, संजय मिश्रा, जोनी लीवर, मुकेश तिवारी, राजेश खट्टर, सेजल शाह, भारती सिंह, नवीन प्रभाकर, मुश्ताक खान, सिंडी खोजोल और क्लॉडिया सिजेला की। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, आवाज़ है हिमेश रेशमिया की। गीत शब्बीर अहमद का है, संगीत हिमेश रेशमिया का।

फिल्म खिलाड़ी 786 के जो डायलॉग्स हैं वो लिखे थे बंटी राठौड़ ने। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था कुशल वेद बख्शी ने, और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर रहे अतर सिंह सैनी। अतर सिंह सैनी जो हैं वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से ग्रेजुएट हैं, और इस फिल्म में बतौर जिन गीतकारों ने अपना सहयोग दिया वो रहे शब्बीर अहमद, समीर, हिमेश रेशमिया और आर मेहंदी। आइए सुनते हैं अगला गीत। आवाज़ें हैं हिमेश रेशमिया और यो यो हनी सिंह की। गीत शब्बीर अहमद का है, संगीत हिमेश रेशमिया का।

हिमेश रेशमिया, यो हनी सिंह और हमशिका अय्यर की आवाज़ों में गीत था फिल्म खिलाड़ी 786 से, और इस गीत के साथ ही संपन्न हुआ एक फिल्म से कार्यक्रम जिसमें आज आपने सुने खिलाड़ी 786 के कुछ गीत। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र रात्रि के 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: दुनिया की नब्ज पश्चिम एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक, आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: सो आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मुज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मुज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये तीन सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त हैं?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है। और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे

0: सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है,
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है। तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया कि हिसाब से उनके लिए भारत एक अहम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35,000 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36,000 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई, बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट तो उसको भी

0: होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक हैं तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं, और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है। और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: कि हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है, और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस, मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत, साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पे, विश्व की अर्थव्यवस्था पे, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है, एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध जैसे क्वाड के अंदर है उसको, साथ में इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रहने वाला है, वो सबका यूज करा जा रहा है।

0: जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए, जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए। और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है। तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है। और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री की ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद यह है, दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुल के जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देयर इज लोकल डिमांड, देयर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देयर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देयर आर नॉट मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड as India is to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by strong policy frameworks and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिम एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है, उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहाँ जाना है और 2070 तक कहाँ जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी हैं, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती हैं, तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाय चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा।
1: जी
3: तो मैं सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है, तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की, और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
4: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिस्ट्रप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
0: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन के साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको यह भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा ये जब भी युद्ध समाप्त होता है, ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
6: चर्चा का विषय है।
7: आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मन चाहे गीत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके दोस्त शशि का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, लेकर हाजिर हूँ आपके भेजे गए खत और उनमें बसी कुछ फरमाइशें।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत अभी आपने सुना फिल्म जिस्म से। गीत नीलेश मिश्रा का था, संगीत एमएम करीम का, पसंद आप सभी की। इसी गीत को सुनना चाहा था नरेश देवी ने सीताराम बाजार पुरानी दिल्ली से। इस गीत के लिए हमें फरमाइश मिली रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार की। मुकाम हिपरसोगा तालुका औसा जिला लातूर से चिट्ठी लिखी उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजनबी शेख, शाकिर इस्लाम भी शेख, बाबा शेख, करिश्मा सिमर, सानिया शाकिल पठान ने। साथ ही बिस्मिला भी शेख, गदर शेख और नीलोफर शेख। हिपरसोगा तालुका बिलोली जिला नांदेड़ होन से चिट्ठी लिखी चांदनी अयूब सैयद, बाल राजे अमन सैयद और माहिरा सैयद ने। मॉडल टाउन करनाल से खत लिखा सुधीर नूतन, नरेंद्र तनेजा, संदीप कुगलानी, जग्गी दुआ और सुनीता शर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था मोहम्मद हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। मनचाही गीत कार्यक्रम के अगले गीत के लिए मैं फरमाइश लिख भेजी है चकला बाजार समाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार ने। पुणे से चिट्ठी लिखी पंकज वाड़ूदे, आर्या प्रियंका, बीटी वाड़ूदे, चंद्रप्रभा वाड़ूदे। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से खत लिखा प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर। मुख्तसर से खत लिखा बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु ने। आदर्श नगर मलूट से चिट्ठी लिखी राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ और साथ ही शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने। मलूट पंजाब से आप हैं राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी विकास, प्रियंका रमन, रितु भविंश, मिशेल किंशुक और दीपांशी इंदौरा। आप सभी ने सुनना चाहा है रहना है तेरे दिल में फिल्म का गीत, आवाज़ है रूप कुमार राठौड़ की, गीत समीर का है, संगीत हरीश जयराज का।

मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से चिट्ठी लिखी बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। महाराष्ट्र हिंगोली से खत लिखा शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम और स्वराज जमदाड़े ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से चिट्ठी लिखी मुकेश पत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश पत्ता। ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से आप हैं मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद साकी पंवार, मोहम्मद हसनैन पंवार। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से हैं अशोक कुमार वांघे, वंदना वाघे, भूपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे। छत्तीसगढ़ बेमेत्रा से आप हैं पूर्णिमा सारथी, पूजा, आरती, भव्या, सुषमा सारथी। बेरड़ी से चिट्ठी लिखी हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर ने। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना। बोल समीर के हैं, संगीत नदीम श्रवण का।

गोला बाजार बक्सर से फरमाइश लिख भेजी है श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। धामणी मनीरा से आप हैं, तुलसीराम डेरे, माया डेरे, वछलाबाई, संदेश, आदेश, अमोल, किरण, प्रज्वल और दादुल्या डेरे। सोमना वाइम से ही हैं डॉक्टर विशाल, तुलसीराम, ललिता, पायल, आरुष, चंद्रकांत पाटिल और शेखर सोनू ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से खत लिखा ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी ने। दुबिहा निवादा गाजीपुर से चिट्ठी लिखी प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। शेरपुर कलां गाजीपुर से खत लिखा अवधेश राय, प्रीति और नवनीत राय ने। लच्छनपुर से फरमाइश लिख भेजते हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, धनक्ष और आरु साहू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से आप हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयदत्त बिरक और मीका बिरक। मुख्तसर से बब्बू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत और निशु। आप सभी ने सुनना चाहा है चित्रा और शान की आवाज़ों में मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म का गीत। बोल देव कोहली के हैं, संगीत अनु मलिक का।

आपके भेजे गए पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अगले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया ने। गांव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री कर्णपुर राजस्थान से खत लिखा राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत वडवाल, शिव सेठी, कर्णपुरी और स्माइल टुटेजा ने। गांव नथाना पंजाब से चिट्ठी लिखी हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता और गीता ने। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से फरमाइश लिख भेजी है गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत और मनविंदर सिंह पांधा ने। और ये खत हमें लिख भेजा है सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से, लिखने वालों के नाम है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। और ये आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से चिट्ठी हमें भेजी है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने। आप सभी ने सुना चाहा है उदित नारायण की आवाज में रोग फिल्म का गीत। गीत नीलेश मिश्रा का है, संगीत MM करीम का।

बठिंडा रोड डबवाली से चिट्ठी लिखी है राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने। जसपुर उत्तराखंड से आप हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। जामभरून अर्थापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय आशीष, पृथ्वीराज साध्वी, परभणिहून और गणेश हरगांवकर। गांव बलियाली, जिला भिवानी, हरियाणा से चिट्ठी लिखी है दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण, ममता, कमल, गर्विश और तमन्ना बंसल ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कोशिला देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। मिहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से खत लिख भेजा है अभिजीत गवहणकर राही, सरिता गवहणकर, प्रिंस एकांश गवहणकर। बहादुरा नागपुर से आप हैं वैशाली शैलेश गवहणकर, श्वेता सुमित गवहणकर, ध्वनि गवहणकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवहणकर और प्रणीता गवहणकर। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र और मानसी शाह, साथी हर्षित, हिमांशु, वंशिका, ज्योति बत्रा, मयंक शाह, कार्तिक शाह और गौतम शाह। आप सभी ने सुनना चाहा है खामोशी फिल्म का गीत, आवाजें हैं अलका याग्निक और हरिहरन की। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है, संगीत जतिन ललित का।

जलगांव सोमनाथ जिला जालना से चिट्ठी लिखी डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक भूतेकर, गणेश, कार्तिक, अश्विनी। औरंगाबाद से वैष्णवी जगदाले, हरसुल सावंगी। भाव सिंह पुरा औरंगाबाद से वैभव गौरव लोखंडे, मेघराज युवराज, रिधोरा देवी और वाकुलणी बदनापुर से आप हैं रुद्र। और मॉडल टाउन करनाल से चिट्ठी लिखी है सुधीर नूतन, संदीप कुकलानी, विनीता वर्मा, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, किरण ठाकुर, आशा गुगलानी और नरेंद्र तनेजा। चंडीगढ़ से खत लिखते हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। छत्रपति संभाजीनगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से खत लिखा बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष ने। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में क्रिमिनल फिल्म का गीत। गीत इंदीवर का है, संगीत MM करीम का।

0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से चिट्ठी लिखी है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने। संबलपुर कांकेर से आप हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका और तेजल यादव। डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल और मीनू बोकोलिया। अनारकली बाजार जगराऊं से आप हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गव्या और सुच्चा पाठक। आप सभी ने सुना चाहा है कुमार सानू की आवाज़ में प्यार तो होना ही था फिल्म का गीत। गीत समीर का है, संगीत जतिन ललित का।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

और कार्यक्रम के अंतिम गीत के लिए मैं फरमाइश लिख भेजी है राजनगर मधुबनी से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम, संगीता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता ने। ऐशबाग पीली कॉलोनी लखनऊ से आप हैं मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक और पंखुरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका, माधवी, साध्वी, तन्मय, राज और गुनगुन। नया पारा भिराई से आप हैं श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, सरोज सूर्यवंशी, ईशर राज, चंद्रकांत, प्राची और टीयूषी। आप सभी ने सुनना चाहा है चित्रा की आवाज़ में तुम बिन फिल्म का गीत। गीत फैज़ अनवर का है, संगीत निखिल विनय का।

इस गीत के साथ ही अपने दोस्त शशि को दीजिए इजाजत कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न करने की। आकाशवाणी का रोहतक केंद्र रात के 11 बजने को है। ठीक 11 बजे से आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन